सुमधुर भा

आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मेरी रेंज 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 29 मई 2026 वार शुक्रवार सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारे आज के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल ट्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला ट्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ठुला मारू चैनल है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है इच्छा दुख का मूल कारण। आलेख और वाचक स्वर हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा के।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठुला मारो चैनल है। सुबह की 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया

0: ये कहा गया है, दुखालय शाश्वतम, यानी आदि अनादि काल से ही पृथ्वी का जीवन दुखों से भरा हुआ है। हालांकि ऊपर ऊपर से देखने पर ये सुखमय, सुंदर और आनंददायक लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। किसी भी सुख को कुरेदो, उसके नीचे से रक्त की तरह दुख भी रिस रहा होगा। लेकिन क्या हम बिना इच्छा किए रह सकते हैं? अगर पूर्णतः कहूँ तो तत्ववेता संत, महात्मा, योगी इच्छा मुक्त होते हैं, लेकिन हम जैसे सामान्य जन तो दुख के घेरे में ही सांस लेते हैं, क्योंकि हम निरंतर सुख की चाहना करते रहते हैं। यहाँ तक कि छोटी से छोटी इच्छा पूरी न होने पर भी हम दुखी हो जाते हैं। तब निसंदेह बड़ी इच्छा तो बड़ा दुख पैदा करेगी, फिर संसार में हमारा काम कैसे चलेगा? क्योंकि बिना इच्छा के हम और आप एक कदम तक नहीं चल सकते। हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इच्छाओं का समूह मत बने, बल्कि अपनी इच्छाओं को वर्गीकृत कर लें। जो अति आवश्यक हो उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए अपनी इच्छा को पूर्णता का आकार पहना सकते हैं। एक विश्व विजेता राजा जब हिंदुस्तान से गुजर रहा था तो उसे एक फकीर मिला। उसने फकीर से आशीर्वाद मांगा कि वो विश्व विजेता बन जाए। फकीर ने कहा, इससे क्या होगा? राजा बोला, इसके बाद मैं चैन से आराम किया करूँगा और खूब सुख की नींद सोऊंगा, क्योंकि लड़ाई के मैदान में बरसों तक रहने के कारण मैं ढंग से सो भी नहीं पाया हूँ। फकीर हंसा और बोला, बस जब आराम करने के लिए सुख की नींद भर सोना है तो फिर ये दुख, ये युद्ध, ये मारकाट क्यों? मुझे देखो, जो काम तुम दौड़ धूप करके करोगे वो मैं अभी से कर रहा हूँ। बरसों हो गए हैं मैं आराम से सोता हूँ और आराम से जागता हूँ। यह सुनते ही राजा की आँख खुल गई और वो चुपचाप अपने देश को रवाना हो गया। स्वामी राम सुखदास महाराज जी के अंतिम संबोधनों में उन्होंने सब साधकों को इतना ही कहा, शांत हो जाओ, कोई भी इच्छा मत करो, परमात्मा है, अभी है और यही है। हमारी इच्छाएं हमें उसे दूर कर देती हैं। जाहिर सी बात है कि इच्छा की पूर्ति करते करते आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, पर इच्छा पूर्ण नहीं होती। और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हम दुख के सागर में डूब जाते हैं, या विभिन्न देवताओं को चढ़ावे चढ़ाकर इच्छा की पूर्ति का प्रयास करते हैं। ये संसार मेरी और आपकी इच्छाओं से नहीं चलता। इसकी अपनी एक गति है, अपना एक सिद्धांत है, अपना एक नियम है, अपनी एक संरचना है। ये ठीक ठीक से परम सत्ता के इशारों पर चलता है। अब ये देखें, इस वस्तुगत संसार में तमाम चीज़ें हमें इच्छा करने के लिए उकसाती हैं, प्रेरक बनती हैं, तो ऐसे में आप अपने मन से कब तक लड़ते रहेंगे? इसलिए लिखकर अपनी इच्छाओं को वर्गीकृत कर लें, फिर जो जरूरी इच्छा हो उसे छांट लें। उनमें भी कई इच्छाएं जरूरी नहीं होती, उन्हें हटा दें। फिर शेष की पूर्ति हेतु ईमानदारी से प्रयत्न करें तो आप पाएंगे कि आपका जीवन सुखमय, सुगम और सरल बनता जा रहा है। अंधाधुंध इच्छाओं से खुद की घेराबंदी मत करें, क्योंकि ये बहुत दुखदायी है। चाहे सुख हो या दुख, हमें समतुल्य रहकर परमेश्वर के नाम का जप करना चाहिए। इससे मन तो निर्मल होगा ही, हम इच्छाओं के मकर जाल से बाहर निकल आ सकते हैं।
1: अभी आपने सुना आज का विचार, विषय था इच्छा दुख का मूल कारण। आलेख और वाचक स्वर थे श्री प्रमोद कुमार शर्मा की। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठुला मारू चैनल है। अब आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 6:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे रामचरित मानस कान,
1: सूट नंबर 43। 43

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम, पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

आपने सुना रामचरित मानस कान। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7:30 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनिए श्री कुशार भाटी के द्वारा काव्य पाठ। 9:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। सुबह 8:45 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा। विषय होगा वो परीक्षात्मक मुकदमा। वाचक स्वर होंगे श्री प्रमोद कुमार शर्मा के। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11:00 आप सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम बोले बिसरे गीत। 12:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और 12:40 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का।

1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम होगा महिला जगत, और 2:30 पर आप सुनेंगी फिल्म संगीत।

सांध्यकालीन सभा में 5:05 पर युवा श्रोतों का कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत एक ही फिल्म से। 7:00 ग्रामीण श्रोतों का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत।

8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम लोक संगीत का, 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत एक ही संगीतकार। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलिस्तान। ये उर्दू कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिलीज किया जाएगा। और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, उस्ताद अमजद अली खान, संतूर पर राग यमन।

0: सुंदरी थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 6:45 होने को ही अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज आप सुनिए लघु वार्ता, विषय है हरी खाद के लिए ढेंचा लगाएं। वाचक स्वर हैं डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा के।
1: भैया राम राम। आज बात करा हरी खाद रे वास्ते ढेंचा लगाने के बारे में। हरी खाद रे वास्ते ढेंचेरी खेती जकी है बढ़ाने सु खेतरी उपजाऊ क्षमता में बढ़ोतरी हुए, जमीन री उर्वरता

0: ता बढ़ावने वास्ते जैविक खाद रे साथ साथ हरी खाद रो प्रयोग भी करनो बहुत ही जरूरी है। गेहूं री कटाई रे बाद खाली होड़ा जका खेत है बीमे हरी खाद रे साथ ढेंचरी फसल उगार किसान जमीन ने उपजाऊ शक्ति बढ़ाने रे मायने काम ले सके। ढेंचा हरी खाद री फसल है, इरो उपयोग खेत रे मायने हरी खाद बनाने वास्ते करी जा करे। इरे प्रयोग रे बाद खेत रे मायने अलग सु यूरिया री अड़ी कोनी पड़े सा। ढेंचरी फसल ने हरी खाद रे रूप में लेवन सु खेत रे स्वास्थ्य रे मायने बिरी रासायनिक और भौतिक संरचना में भी सुधार देखी जा करे। सागे सागे खेतरे जल धारण क्षमता में भी बढ़ोतरी है। खेतरे महीने ढेंचरे सड़ने सु नाइट्रोजन पोटास सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर आयरन जिसा पोषक तत्व भी खेत में मिल जावे। ढेंचरे उगाने सु मुफ्त रा उर्वरक आपने आसान तरीके सु मिल जावे। ढेंचा सु बनावड़ी जकी हरी खाद हुए इरे खेती सु तगड़ी कमाई हो जावे और एक इसी खेती हुए जकेरा घना सारा फायदा हुए। अबे ये पैदावार सु कई किसान तगड़ी कमाई कर रिया है। खेती में आजकल नया नया प्रयोग हो रहा है और कई तरह का उर्वरक भी आ गया है, पर पुराना तरीका में ढेंचरो उपयोग आज भी हो रही है और ढेंचे सु हरी खाद बना रही है। दलहनी फसल लगाने से पहले ढेंचरी बुआई अगर करता तो खेत री उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हुए और खेत में जगह नाइट्रोजन की कमी हुए पूर्ति हो जाए और पौधे ने नाइट्रोजन रो पोषण मिल जाए। ढेंचा एक प्राकृतिक खाद रो काम करे और रासायनिक उर्वरक रे इस्तेमाल में कमी लावे। इन्हें कोई भी मौसम में उगाया जा सके, पर ज्यादा पैदावार वास्ते खरीफ रो सीजन चोखो रहे। बुआई सु पहली खेत ने चोखी तरह जोत ले, पछे ढेंचरी बुआई कर दू और बुआई जको है सरसों रे तरिया ही लाइनर मैंने यानी कतार रे मैंने कर सको या फिर छिड़काव विधि सु कर सको। पण ढेंचे ने खाली हरी खाद रे वास्ते उगाया है तो इस स्थिति में छिड़काव विधि सु बुआई ठीक रहे। ध्यान रहो कि खेत में ने कठी पानी नहीं रुके, नहीं जने पैदावार माथे असर आ सके। अगर ढेंचरी खेती कर रिया है तो बिना कतारा मायने भी बुआई करी जा सके। एक एकड़ ढेंचरी खेती वास्ते 10-15 किलो बीज री अड़ी पड़े है, बठई 4-5 सिंचाई की जरूरत हुए। चोखी पैदावार वास्ते निराई गुड़ाई रो भी ध्यान रखना है ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हुए। सागे रोगा सु बचाव ने वास्ते कीटनाशक रो प्रयोग भी करियो जा सके। ढेंचरी फसल करीब 4-5 मिनट में काटन वास्ते तैयार हो जाए। इस फलियार महीने बीज हुए जकन तोड़ सुखायो जावे और पछे मशीनरी मदद सु बीज ने अलग करी जाए। ढेंचरी बचूड़ी जकी सूखी घास है बिरो इस्तेमाल ईंधन रूप में काम में आ सके है। इरे इस्तेमाल सु टाट बांधने और सब्जियारी खेती में पौधे ने हल्की छिया देने वास्ते भी करियो जा सके। एक एकड़ में करीब 25 टन ढेंचरी पैदावार मिल सके है और इरा बीज जको है 40 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में बिक जावे। इन तरिया सु किसान जको है एक एकड़ में 25 टन उगार और 10 लाख रुपया तक री आपरी आय बना सके है। बीज री मात्रा और बोनेरी जकी विधि है एक सामान्य है। सामान्य भूमि में 10-12 किलोग्राम बीज है और कल्लार भूमि अगर है तो 20 किलोग्राम बीज जो को है एक एकड़ वास्ते अड़ी पड़े हैं। जल्दी उगाने वास्ते बीज ने रात भर पानी में भिगो दो और फिर बाद में उगाया जा सके। बीज कृषि विभाग से 75% अनुदान माथे भी लियो जा सके है। ये तो ढेंचो रबी और खरीफ दोनों ही बगत उगाया जा सके है, पर खरीफ रे मैंने ढेंचो उगाणो ज्यादा चोखो रहे। ढेंचा की खेती सामान्यतः कई क्षेत्र में होया करे है। बुआई सु 1-1.5 महीने रे महीने ही पौधो जो को है 3 फीट तक लंबो हो जावे और कांठर में नाइट्रोजन रो भंडार भरी जावे। सागे ढेंचरी कटाई रे बाद रे मैंने इन्हें खेत रे मैंने फैला देनो चीजे और मिट्टी री स्थिति रे आधार पर इरी बुआई करी जा सके। बुआई सु 45-60 दिन रे महीने इमें पत्तियां आवन लाग जाए और 100 दिन रे महीने बिने एकत्रित कर सको और अगर आप 3 महीने रे महीने चाहो तो 3 महीने रे महीने ढेंचरी कटाई कर और मिट्टी पलटन ने हलसू इन्हें जमीन रे महीने दबा दो। अगर ढेंचे ने खेत रे महीने मिलानो चाहो तो मिट्टी पलटन वाले हलसू जुताई कर और चोखी तरह मिला देनो चीजे और बाद में पटेलो चला देनो चीजे। खेत रे महीने अगर नमी कम है तो कई बार पानी देने रे भी अड़ी पड़ सके है, फिर बाद रे महीने इन्हें जमीन में मिलानो चीजे। ढेंचे ने अगर जमीन रे महीने मिला दा तो फसल सड़ जावे और जमीन रे महीने खाद बन जावे और हरी खाद जकी है 20-25 दिन रे बाद रे महीने फसल महीने बोई जा सके। ढेंचरी बुआई सु किसान रे आमदनी में बढ़ोतरी हो सी और किसान जको है कम पैसा रे महीने चोखी पैदावार प्राप्त कर सके।
1: सुना कार्यक्रम खेती की बातें, ये सुनिए लोक भजन।

0: आपने सुना लोक भजन। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः।

0: सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुप्रभात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, हर दिन नया होता है और हर दिन कुछ विशेष। आज भी ऐसा ही एक विशेष दिन है। आज संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिवस हर वर्ष आज ही के दिन यानी 29 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में शामिल सभी सैन्य और पुलिस कर्मियों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1948 से जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और उसके बाद पहला शांति मिशन शुरू किया गया, उसके बाद पूरे विश्व के कई देशों के सैनिक मिलकर काम करते हैं। जहां पर भी शांति स्थापित करने की जरूरत होती है, वहां पर एकजुट होकर सैन्य सहायता और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं और इन्हीं प्रयासों में जो भी सैनिक शहीद हो जाते हैं उनको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2002 में की गई और आपको बता दें कि 29 मई की तारीख का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला शांति मिशन शुरू किया था। इन शांति सैनिकों को अक्सर ब्लू बेरेट या ब्लू हेलमेट कहा जाता है क्योंकि वास्तव में वे हल्के नीले रंग की हेलमेट या टोपी पहनते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करने वाले शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि देना और कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है।
1: बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमीं पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
2: ओ खुशिया, तू नहीं जानता सिखानों के इस कच कड़ा कृपान कंगा सिखों का निशान ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: करना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रबंधक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रबंधक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। श्रोताओं, समय समय पर हमारे देश में बहुत से महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया और इस देश को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ही

ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। जी हाँ, आज भारत के पांचवें प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि सुधारों, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और किसानों के अधिकार के लिए समर्पित किया। अगर उनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो वह 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और राज्य में कृषि क्षेत्र में विकास में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली में स्थित उनकी समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है और मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे ही महान व्यक्तित्व और विभूतियों के कारण आज हमारा देश इस मुकाम पर पहुंचा है। इन्हीं के कारण आज हम विकास की डगर पर चल रहे हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। श्रोताओं, गर्मी का मौसम है और वास्तव में बहुत गर्मी है और सुबह से लेकर रात तक पूरे 24 घंटे गर्मी का आलम है। तो इस गर्मी को यूं कहें कि इस गर्मी में कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। सबसे जरूरी बात कि दोपहर के समय यानी कि 12 से 5 बजे तक लगभग

अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, ऑफिस से बाहर ना निकले। उसके अलावा निरंतर पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, उसमें ग्लूकोज है, ORS है, जूस है, छाछ है, पानी है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, भोजन हल्का और सुपाच्य लें, कपड़े हल्के और सूती पहने। वैसे तो हर वर्ष ही हमारे प्रदेश में गर्मी बहुत रहती है और जो ये समय है से हम हमारी भाषा में नौतपा भी कहते हैं, उस समय में सूर्यदेवता अपने पूर्ण आवेश में होते हैं। कहते हैं कि वर्ष के ये नौ दिन सबसे गर्म दिन होते हैं, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। और इस वर्ष नवतपा यानी कि ये जो समय है वो है 25 मई से 2 जून। तो अभी यही समय चल रहा है, तो कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम इस भीषण गर्मी में अपने आप को बचा सकें। बचाने से याद आया कि केवल गर्मी से बचने की जरूरत नहीं है, एक और जो गंभीर विषय है जिसे हमें बचाव की बहुत जरूरी है वो है हमारा साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा वास्तव में कंप्यूटर, मोबाइल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, नेटवर्क और जो हमारे डेटा है उन पर साइबर हमलों से बचाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार की चोरी में हमारी संवेदनशील जानकारियां, हमारे डेटा, हमारे फोटोज, हमारे वीडियोज हैक किए जा सकते हैं। तो जरूरी है कि हम इससे बचाव करें। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर नेटवर्क को बचाने के लिए कोई मैलवेयर से सुरक्षित करें। मैलवेयर कई तरह की ऐसी कंपनियां हैं जो इन साइबर हमलों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनका सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल और कंप्यूटर में डालना चाहिए। उसके अलावा अगर आप मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं तो कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, बिना मतलब के, बिना जानकारी के कोई भी वेबसाइट पर अगर आप देख रहे हैं, उसको सर्फ कर रहे हैं, तो उस पर कोई भी अनजाने लिंक पर डाउनलोड ना करें। हो सकता है वो कोई मालवेयर हो और आपका पूरा मोबाइल हैक कर लिया जाए। इसके अलावा कुछ और बातें जो बहुत जरूरी है कि आप किसी को भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी ना रखते हो, और किसी को भी बैंकिंग OTP, आधार OTP शेयर ना करें। अपने जो भी खाते हैं या आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट भुगतान करने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पासवर्ड है वो जटिल रखना चाहिए और उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। सुरक्षा की अतिरिक्त ध्यान रखने के लिए सभी खातों पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के साथ बैंक OTP, UPI पिन या CVV जैसी संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी ये जो डिजिटल उपकरणों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं

सुरक्षा भी देंगे और हमारा काम भी आसानी से करेंगे, लेकिन अगर हम असावधान रहेंगे तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी की बातों का ध्यान रखें, गर्मी का ध्यान रखें और गाना सुनें।

कैसे कहें अलविदा, जी हाँ श्रोताओ, हमें आपसे अलविदा कहने का मन ही नहीं करता, लेकिन हम समय के साथ चलते हैं और वास्तव में जीवन में हमेशा समय के साथ ही चलना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो आपको अलविदा कहने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी कल फिर मिलने के वादे के साथ आज दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, कुलकुलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात आकाशवाणी मिखिल का ये ढूंढा मारू चैनल है। 7:31 हो चुके हैं और आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कभी कभी से गीत। इस गीत को लिखा है साहिल उद्यानवी ने और संगीत बद किया है खयाम ने।

माशा अल्लाह कहना तो मना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो मना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया।

तो आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पिंक गेट से गीत। इस गीत को लिखा था नजरुल सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था एच डी बर्मन ने। आकाशवाणी बिकानेर का ये थोड़ा मारो चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यकीन से गीत।

0: संगीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी मेघालय का ये ड्रोना मारू चैनल है। 8 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह

0: कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र।

0: अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
4: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला

0: जेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary.

असफलता को स्वीकार किया, कमी रही जो सुधार किया, गिरते पड़ते संभल कर चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली, संघर्षों का मैदान न छोड़ा, काबिलियत से मुंह न मोड़ा, पीठ पर लाद हौसला तू बढ़ती चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, अर्जुन सा लक्ष्य बहुत खास, तू निरंतर बढ़ती चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली, देखेगा जमाना तेरी उड़ान, उड़ने को है सारा आसमान, तू भय से लड़ना सीखती चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली, खत्म हुआ सब्र का इम्तिहान, बनाया तूने एक खास मुकाम, कदमों के निशान तू छोड़ती चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली। अब पेश है मेरा एक गीत।

सागर। अब आपके सामने प्रस्तुत है मेरी चौथी कविता तू कमाल कर। आईने में खड़ा शख्स कह रहा है तुझसे, आईने में खड़ा शख्स कह रहा है तुझसे, जरा सुन बेवजह अपनी परवाज पर ना यूं सवाल कर।

0: वजह अपनी परवाज पर ना यूं सवाल कर, कुछ मन की कर ले जो मन करे, कुछ मन की कर ले जो मन करे, इस मन चले मन का भी कुछ ख्याल कर, तूफानों से प्यार कर लेकर लहरों से स्वर, तूफानों से प्यार कर लेकर लहरों से स्वर, जिंदगी के संगीत में अपनी एक ताल कर, जिंदगी के संगीत में अपनी एक ताल कर, डर के उस पार है तेरी मंजिलें, डर के उस पार है तेरी मंजिलें, डर को डराने को साहस की एक ढाल कर, डर को डराने को साहस की एक ढाल कर, हारना और जीतना है मंजर आखिरी, हारना और जीतना है मंजर आखिरी, कुछ करने की ठान कर तू बस कमाल कर, कुछ करने की ठान कर। अब आपके सामने प्रस्तुत है मेरी एक कविता आभास। मैं धरती मैं बादल मैं पानी मैं आकाश भी, मैं धरती मैं बादल मैं पानी मैं आकाश भी, मैं आज मैं ही कल है मुझ में समाया, मैं आज मैं ही कल मुझ में समाया है इतिहास भी, मैं निडर आत्मविश्वासी हिम्मत का ओढ़ूं लिबास भी, मैं हिम्मत मैं निडर आत्मविश्वासी हिम्मत का ओढ़ूं लिबास भी, जड़ों से जुड़कर पंख फैलाऊं अपने करूं नए का, जड़ों से जुड़कर पंख फैलाऊं अपने करूं नए का अभ्यास भी, जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, मेरी सभ्यता संस्कृति का निवास भी, जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, मेरी सभ्यता संस्कृति का निवास भी, माथे पर बांधा साहस को, माथे पर बांधा साहस को है चेहरे पर दृढ़ विश्वास भी, है चेहरे पर दृढ़ विश्वास भी, हौसले का हार गले में होठों पर एक आस भी, हौसले का हार गले में होठों पर एक आस भी, आंखों में समेटे भाव कई है चेहरे पर उजास भी, आंखों में समेटे भाव कई है चेहरे पर उजास।
1: अभी आपने सुना काव्य पाठ श्री कुशार भाटी के द्वारा, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठुला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सौरभ। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 9 बजने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चार जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। इसके

0: अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और इनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांवों तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झाबड़ सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
2: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोल पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अभी तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे, ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुंचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

0: सितारों का नहीं लगता है, उस पहाड़ी पे ये चांद का ग्रहण लगता है। चांद महराज पे कोई भी ये कहत है, जो रघु आंखी है तो वो ग्रह लगता है।
1: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना लोक संगीत आकाशवाणी बीकानेर का ये धुन हमारा चैनल है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गांधी चर्चा, विषय है वो परीक्षात्मक मुकदमा। वाचक स्वर हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा की, प्रस्तुति हैं श्री अशोक कुमार की और संयोजन किया है अमित सिंह ने।

गांधी चर्चा आरंभ। श्रोताओं नमस्कार, गांधी चर्चा की आज के अंक में हम लेकर आए हैं पूज्य बापू का एक लेख जो कि यंग इंडिया में 4 अप्रैल 1929 को प्रकाशित हुआ था। बापू लिखते हैं, कपड़ों की होली के मामले में आखिर कलकत्ता पुलिस की, दूसरे शब्दों में बंगाल सरकार की पूरी पूरी जीत हुई है। इस मामले के सिलसिले में मैंने जो कुछ किया है, कोई भी उसकी नकल न करे, उसे आदर्श न माने। मनुष्य के जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें वो चाहता है कि लोग उनका अनुकरण करें। दूसरी कई बातें ऐसी भी होती है जो वस्तुतः बुरी न होते हुए भी न तो अनुकरणीय होती है और न उनका अनुकरण किया ही जाना चाहिए। अतः मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि कई मित्रों ने कई मित्रों को इस बात से उलझन और दुख भी हुआ कि मैंने व्यक्तिगत जमानत देकर भी नज़रबंदी से अपने आप को छुड़ा लिया, मुकदमे में अपना बचाव पेश किया और इससे भी

ज्यादा ये कि मैंने अपने बचाव के लिए वकील खड़ा किया। उन्होंने जोरदार शब्दों में मुझसे पूछा कि मैं एक पक्के असहयोगी की हैसियत से ये तीनों काम किस तरह से कर सकता हूँ, और इस तरह जिन बातों का मैं अब तक उपदेश देता आ रहा था उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। मनुष्य दो तरह से अपनी बात पर दृढ़ रहता है, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। जो आदमी भारत को गर्मी में नंगे बदन रहता है जो आदमी भारत की गर्मी में नंगे बदन रहता है वो अपनी बात पर कायम रहने की गरज से अगर नॉर्वे की सर्दी में भी नंगे बदन रहेगा तो मूर्ख समझा जाएगा और ऊपर से अपनी जान गंवा बैठेगा। जो काम मैं व्यक्तिगत हैसियत से नहीं कर सकता, एक प्रतिनिधि के तौर पर, वही मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। एक और अखिल भारतीय चरखा संघ के ट्रस्टी के नाते मेरे पास लाखों रुपए हैं, लेकिन दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप में एक दमड़ी भी मेरे पास नहीं है। उस संघ के ट्रस्टी के नाते अनिवार्य होने पर मैं मुकदमा दायर करने का अधिकार देता हूँ, मुकदमा दायर करने का आदेश भी देता हूँ। अपनी व्यक्तिगत हैसियत में मैं ऐसे किसी अपनी व्यक्तिगत हैसियत में मैं ऐसी किसी आवश्यकता की कल्पना नहीं कर सकता। कपड़ों की होली के मामले में विदेशी वस्त्र बहिष्कार समिति के अध्यक्ष के नाते मेरी हैसियत एक ट्रस्टी की थी। अगर मुझे ऐसा लगा होता कि होली को रोकने के संबंध में पुलिस का नोटिस कानून सम्मत है तो मैं श्रद्धानंद पार्क की होली को रोकने की सलाह देता, कारण मैं उसमें सभी ने अवज्ञा सलाह देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि जिस धारा के अधीन नोटिस दिया गया था उसके दो अर्थ किए जा सकते हैं, अतः परीक्षण के लिए एक योग्य विषय बन गया। इस सिलसिले में आगे जो कार्रवाई हुई वो परिस्थिति के अनुसार स्वाभाविक थी। अगर होली को रोकने के संबंध में पुलिस के अधिकारी की जांच जरूरी थी तो मामले की सफाई देनी करनी चाहिए। अगर होली को रोकने के संबंध में पुलिस के अधिकारी की जांच जरूरी थी और अगर सफाई देनी जरूरी थी तो मुझे विनम्र भाव से किसी वकील के द्वारा अपनी सफाई पेश करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत समय से छोड़ी हुई अपनी वकालत की योग्यता के आधार पर कानून के शास्त्रीय मुद्दों पर बहस करना दम्भपूर्ण कार्य होता। मेरा व्यक्तिगत जमानत न देना सार्वजनिक जीवन में अपने स्थान की मर्यादाओं का उल्लंघन करना होता। अगर मैं जमानत के पत्रक पर दस्तखत न करता तो भी मेरे विचार से पुलिस कमिश्नर ने मुझे बर्मा जाने की इजाज़त दी होती, किंतु यदि मैं दस्तखत न करता तो लोगों में एक शिष्ट और सज्जन पुरुष के रूप में मेरी जो ख्याति है उसे मैं खो बैठता। लेकिन असहयोगियों के सामने ऐसे मामले बार बार पेश नहीं होते। वे ऐसे जिम्मेदारी के काम में हाथ लेंगे ही नहीं या लेने से बचेंगे जिनमें व्यक्तिगत आचार और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के बीच संघर्ष की संभावना हो। इसी कारण मैं जनता को इस मामले में मेरी नकल न करने के लिए सचेत कर चुका हूँ। साधारण तौर पर कसौटी तो ये है कि असहयोगी को अपने लाभ और आराम के लिए न तो जमानत का सहारा लेना चाहिए न अपना बचाव पेश करने का। कलकत्ते के मामले का जो परिणाम प्राप्त हुआ वह निराशाजनक है और उससे ब्रिटिश अदालतों के संबंध में मेरी धारणा की पुष्टि होती है। अदालत ने पुलिस के व्यवहार को जिस ढंग से उचित साबित किया है मुझे उसकी आशा नहीं थी। अदालत का कर्तव्य तो ये था कि वो पुलिस

की कार्य अदालत का कर्तव्य तो ये था कि वो पुलिस के कार्य की निंदा करती, क्योंकि मेरे इस अत्यंत स्पष्ट वक्तव्य के बावजूद उसने होरी साधारण तौर पर कसौटी तो ये है कि असहयोगी को अपने लाभ और आराम के लिए न तो जमानत का सहारा लेना चाहिए न अपना बचाव पेश करने का। कलकत्ते के मामले का जो परिणाम प्राप्त हुआ वह निराशाजनक है और उससे ब्रिटिश अदालतों के संबंध में मेरी धारणा की पुष्टि होती है। अदालत का कर्तव्य तो ये था कि वो पुलिस के कार्य की निंदा करती, क्योंकि मेरे इस अत्यंत स्पष्ट वक्तव्य के बावजूद उसने होली के काम में रुकावट पेश की थी कि मैं सविनय अवज्ञा करने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा पक्का विश्वास है कि प्रस्तुत धारा श्रद्धानंद पार्क जैसे स्थानों पर लागू नहीं होती। लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि कलकत्ता की पुलिस को उसकी हुलड़बाजी के लिए शाबाशी और सदाचार का प्रमाण पत्र मिला है। अदालत के इस निर्णय से मेरा यह विचार और भी दृढ़ हो गया है कि अधिकारियों और जनता के गंभीर विरोधों की स्थिति में न्यायाधीश अनजाने ही क्यों न हो अधिकारियों को ही दोषमुक्त ठहराते हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मामला परीक्षात्मक मुकदमे के रूप में लड़ा गया, अन्यथा सिद्धानंद पार्क में जो विशाल प्रदर्शन हुआ उसका होना असंभव था। पुलिस के उदंडतापूर्ण कार्य के चलते बहिष्कार आंदोलन का जैसा प्रचार हुआ उसे जो प्रोत्साहन मिला वो अन्यथा शायद कभी नहीं मिलता। अतः पुलिस को सदाचार का जो प्रमाण मिला है वो स्वागत की चीज़ है। श्रोताओ, ये था यंग इंडिया में प्रकाशित पूज्य बापू के एक लेख का पाठ, और आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। विषय था वो परीक्षात्मक मुकदमा। वाचक स्वर थे श्री प्रमोद कुमार शर्मा के, प्रस्तुति थी श्री अशोक कुमार की और संयोजन किया था अमित सिंह ने। आकाशवाणी मेघालय का ये ढूंढ मारो चैनल है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
4: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
5: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
4: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
5: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी,
4: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
5: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
4: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
5: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
4: जी, ये बात तो है।
5: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
4: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
5: जी,
4: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विघ्नेश जी, अब एक खास बात, ये

0: बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजीत जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
0: जी
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800044559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलें।

0: लिए यह कह जाते।
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निसंदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सब इसका पीछे जा। हाँ, और सब इस सीधा सेंटर में डालना। ओके।
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में

0: पुरानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था, लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे। हम तो लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
3: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
3: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
4: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
4: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
4: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें

0: इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालुबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
1: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थी। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़ू।
0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित

0: इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो।

0: कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठुलमरु चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को ही अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे आप पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बंधु,
2: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आज कहता है स्मार्ट।

0: सुना फिल्म वाई चीट इंडिया से गीत आवाज़ थी अरमान मलिक की। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म भोला से, आवाज़ है इरशाद कामिल और बी पराग की, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म दे दे प्यार दे से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। लिखा है अरशाद कामिल ने और फिल्म का नाम है धमकी और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। आप ये गीत सुनेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: एक जमाने से कहानी

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए।
1: डाउनलोड फेस ओटीटी ऐप।

आपने सुना जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में फिल्म श्रीकांत से गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म वेदा से। आवाज है अमर मलिक और अरिजीत सिंह की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी विकल्प का ये थोड़ा मारू चैनल है। सुबह के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का ये गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आंधी से। लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

ट्रिफल और गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म थी 12 o'clock। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था उपेन नायर का। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमरु चैनल से सुन रहे हैं। डीजे कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में

फिल्म आबरू का ये गीत। गीत को लिखा है जीएल रावल ने, तो सुनिए फिल्म आबरू का ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, गीत को लिखा था हर्षद जयपुरी ने, गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने, फिल्म थी आंसू। कार्यक्रम में आप सुनिए हेमलता के स्वर में रविंद्र जैन के लिखे गीत को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। फिल्म का नाम है सुनैना।

संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था शिव कुमार सरोज ने और फिल्म थी कॉलेज गर्ल और गाया था किशोर कुमार ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमरु चैनल से सुन रहे हैं। यह कार्यक्रम में आप सुनिए रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है रविंद्र जैन ने। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो प्यारा मन भाए और गीत को गाया है हेमलता और साथियों ने।

कथन बोले बिसरे गीत आप इस वक्त सुन रही हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, गीत को गाया है किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है बनारसी बाबू।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था राजेश रोशन का। कार्यक्रम भोले बिसरे गीत में अब आप सुनेंगे खयाम के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है नक्श लालपुरी ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है दर्द।

0: प्रेम भोले बिसरे गीत के आखिर में सुनिए। रवि के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, और फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग।
1: ये रातें, ये मौसम।

किशोर कुमार और आशा भोसले की गायब फिल्म दिल्ली का ठग फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये डोना मारो चलो है। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नामलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

0: गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी सभा में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं हमारी सभा में दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत, समय रहेगा दिन में 1:05। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान और स्वरोजगार के अवसर और क्षेत्र। साथ ही आप सुनेंगे ऑनलाइन शॉपिंग और सावधानियां और सुनेंगे आप एक वार्ता, महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सोनिया करोला।

हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा करियर का चुनाव रुचि के अनुसार। लघु जानकारी के विषय रहेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि और अग्निपथ योजना। साथ ही आप सुनेंगे विटामिन सी और अनुच्छेद 49 के बारे में और आखिर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। संध्या 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी हमारे आकाशवाणी जयपुर के आमिर जनरल से। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा के विषय रहेंगे देसी व संकर बीजों में अंतर, नशा मुक्त गांव आदर्श गांव। साथ ही आप सुनेंगे डेयरी व्यवसाय की मजबूती के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और कृषि के लिए वरदान है नौतपा। आखिर में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य। सुगम संगीत सुनेगा संध्या 7:45 पर लोक संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30। आकाशवाणी चौपर के आमिर जनरल से रात्रि 10:00 आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अमजद अली खान का संतूर पर बजाया राग यमन आप सुनेंगे समय रहेगा रात्रि 10:30।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन की 12:10 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के हमारे आज के कलाकार हैं गुलाम अली। आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ गजलें।

0: आपको।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गायें के गायें कुछ गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मुझे 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, गीत को गाया है उदित नारायण और लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत था राम लक्ष्मण का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मनोचरण से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए निखिल विनय के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा समीर ने, गीत को गाया है सोनू निगम श्रेया घोषाल ने, फिल्म का नाम है कौन है जो सपनों में आया।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। मिशन वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के एक बजने वाले हैं कुछ पलों में आप आकाशवाणी जयपुर के आमिर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: 395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के एक बजने वाले हैं, कुछ पलों में आप आकाशवाणी जयपुर के आमिर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट और लू का असर कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। इस बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू तथा आसपास के इलाकों में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कोटा, पिलानी, जैसलमेर, अलवर, फलोदी, बीकानेर में गर्म हवाएं चली और हीट वेव का असर बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने परिंदों और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
3: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूँ। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भामाशाहों, दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गांव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं। राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए।
2: प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने बताया कि 24 मार्च से राज्य के 11,000 से ज्यादा अधिक जोखिम वाले गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख से अधिक एक्सरे और करीब 2.25 लाख से ज्यादा NAT की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि सक्रिय केस गतिविधियों में कुल 32,000 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 38,000 रोगियों को पोषण किट वितरित किए गए हैं, साथ ही 2,000 नए निक्षय मित्र भी जोड़े गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक जल स्रोतों को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वृक्ष पूजन कर कलश यात्रा भी निकाली गई। उधर बालोतरा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसके तहत पुराने तालाबों, जोहड़ और बावड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेल मंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के 2 इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से RTO विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे RTO टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया। इसके जरिए

0: जरिए लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का भुलावाड़ो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुई है। अब बोली सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई है माधवी व्यास और संध्या शर्मा।

0: आकाश की बुलंदियों को छूने का हौसला रखने वाली, घर को स्वर्ग बनाने वाली और समाज को एक नई दिशा देने वाली आप सभी सजग, सशक्त और खूबसूरत महिलाओं का स्वागत है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। और मैं हूँ माधवी व्यास, आपकी दोस्त, और मेरे साथ है मेरी दोस्त
1: संध्या ओझा।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों, कहते हैं कि पंखों की क्या बिसात जब हौसले उड़ान भरते हैं। ये आज की नारी है जनाब, जो हर मोड़ पर इतिहास रचती है। सखियों, आज का हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है आपकी खुशियों को, आपके सपनों को, आपकी सेहत को और आपकी उन अनकही कहानियों को जो हर महिला को खास बनाती हैं।
0: आज महिला जगत में हमारे पास आपके लिए बेहद खास चर्चा, कुछ बेहतरीन नुस्खे और ढेर सारी बातें हैं। दिल थाम कर बैठिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। तो चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में। सबसे पहले ये सुनते हैं हमारा हौसला भरा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कहते हैं किसी भी देश में कि असली ताकत उसकी महिलाएं होती है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार जागरूक बनता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने परिश्रम और प्रतिभा संदेश दे रही हैं, प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है ना संध्या
5: जी? बिल्कुल माधवी, लेकिन

0: जब हम कहते हैं कि देश प्रगति कर रहा है तो अक्सर आंकड़े हमें ना बड़ी बड़ी इमारतों या सड़कों के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस नींव में कितने अनगिनत महिलाओं का पसीना, उनकी बुद्धिमता और उनका जो त्याग है ना, वो शामिल है।
1: बिल्कुल सही कहा। आज महिलाएं डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, सैनिक, पायलट और प्रशासनिक अधिकारी भी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर घर की जिम्मेदारियां भी निभाते हुए भी वे परिवार को संस्कार और मजबूत देने का काम बराबर से कर रही हैं।
0: बिल्कुल मेरी प्यारी बहनों, हमें गर्व होना चाहिए कि भारतीय नारी अब सहयोगी नहीं है, वो नेतृत्व करता है। आइए कुछ तथ्यों पर नजर डालें जो यह बताते हैं माधवी कि हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया है।
1: और हाँ, साथ ही साथ हमारी ग्रामीण महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। खेती हो, चाहे पशुपालन हो, छोटे उद्योग हो या फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वे आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी निभा रही हैं, है ना?
0: बिल्कुल। अब मैं पता है माधवी, हमारी सखियों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जो आंकड़े कह रहे हैं कि ना आज भारत के अंतरिक्ष मिशनों में 500 से अधिक जो महिला वैज्ञानिकों का हाथ है, मंगलयान मिशन जो था यानी कि मॉम, उसकी सफलता का श्रेय उन्हीं महिला वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने अपने धैर्य से जटिल गणनाओं को सुलझाया था।
1: बिल्कुल, उनके मेहनते हाथ केवल घर नहीं संभालती हैं बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करती है, क्यों?
0: बिल्कुल माधवी। और बताए माधवी, एक और बात है कि हमारी बहन बेटियां लड़ाकू विमान जो उड़ा रही हैं, या ये कहें कि राफेल विमान को उड़ाने से लेकर सियाचिन जैसे दुर्गम ग्लेशियर पर ना पहली बार किसी महिला चिकित्सा अधिकारी की भी तैनाती हुई है।
1: और सबसे सुंदर बात यह है कि महिलाएं जहां भी जाती हैं वहां संवेदनाएं, सहयोग और सकारात्मक सोच भी साथ लेकर जाती हैं, है ना? यही कारण है कि आज देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है।
0: साथ ही पता है मैं ये भी बताना चाहूंगी माधवी, हमारी सखियों को, कि भारत के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 8 करोड़ से अधिक महिलाएं आज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए कुल ऋणों में से 70% से अधिक का जो लाभ है ना सखियों, वो हमारी महिला उद्यमियों ने लिया है। ये आंकड़े नहीं है सखियों, ये एक मौन क्रांति की गूंज है।
1: बहनों, एक महिलाएं केवल रिश्ते नहीं निभाती हैं, वो सपनों को आकार भी देती हैं, संघर्षों को शक्ति में बदल भी देती हैं और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य भी संवारती हैं।
0: लेकिन माधवी, मेरा फिर भी एक सवाल है कि ना जो उद्यमी महिलाएं हैं या फिर जो बाहर काम कर रही हैं, लेकिन उस माँ के योगदान को कौन गिनेगा जो एक भविष्य के नागरिक को संस्कार देती है? उस कामकाजी महिला के योगदान को कौन गिनेगा जो घर और दफ्तर के बीच तालमेल बिठाते हुए अपनी इस थकान को एक मुस्कान के पीछे छुपा लेती है? सखियों, आप जो अपने घर को घर बनाए हुए हैं ना, आप जो अपने बच्चों में देश प्रेम का बीज बो रही हैं, यह सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण है। अर्थशास्त्री भले ही इसे GDP में नहीं गिनते, लेकिन यह देश की असली सामाजिक पूंजी है। आप केवल कार्य नहीं कर रही हैं, आप आने वाली पीढ़ी को निर्मित कर रही हैं।
1: बहुत खूब संध्या। तो आइए हम सभी महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भर और उनके अधिकारों को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो तभी देश सचमुच प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। नारी केवल घर की रोशनी नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की पहचान है। और इसी पहचान के साथ चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: स्टार्ट किया।
1: सखियों, संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि महिलाओं के जीवन की मधुर शक्ति है। उनके संघर्षों को सहारा देती, भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है और मन को नई ऊर्जा से भर देती है। इन्हीं भावों को सुंदर शब्दों में पिरोते हुए प्रस्तुत है डॉक्टर सोनिया करोल की विशेष वार्ता, जो सुरों की यह यात्रा आपके मन को भी छू जाए। इसी आशा के साथ सुनते हैं हमारी आज की वार्ता, जिसका विषय है महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व।

बहनों, एक महिला होने के नाते संगीत मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि इसने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमेशा हमारे लिए कुछ अच्छा ही करता है। संगीत मेरे लिए प्राणवायु और ऑक्सीजन की तरह है, जो मेरे जीवन को और भी अच्छे से जीने में सहायता करता है। संगीत हमें स्वस्थ तथा शांत रहने में भी हमारी सहायता करता है। सत्य ही कहा है किसी ने, बिना संगीत के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संगीत के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। संगीत ध्यान की तरह है, यदि पूरी लगन और श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास किया जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को बढ़ाता है तथा उसे सुधारता है। हम संगीत से जुड़े सत्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह बहुत ही शक्तिशाली है, जो हमारी तरह ही भावना और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा तक को स्पर्श करता है, हमारे संसार से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। संगीत निश्चित ही एक भौतिक प्रक्रिया है, और जिस प्रकार प्रकृति और प्राणी जगत में प्रकाश और

गर्मी का प्रभाव होता है, उससे उनके शरीर भरते हैं, पुष्ट और स्वस्थ होते हैं। उसी प्रकार संगीत से भी तापीय और प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होती है और वह प्राणियों के विकास में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना अन्न और जल। महिलाएं ही नहीं वरन पूरी मानव जाति के लिए संगीत ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है। संगीत आत्म शांति की वह कुंजी है जो हमें मानसिक और शारीरिक स्वस्थ बनाने में हमारी सहायता करती है। संगीत के लय ही जो बीते समय पसंदीदा स्थानों, व्यक्तियों तथा छोटे उत्सव आदियों में सभी अच्छी यादों का, सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करती है। संगीत हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और यह हमारी दैनिक जीवन का भी हिस्सा बन चुका है। बहुत से लोग विभिन्न उत्सवों और कार्यक्रमों पर संगीत सुनना और गाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग हर समय संगीत सुनते हैं, दफ्तर में, घर में, रास्ते में, जहां कहीं भी वो जाते हैं, संगीत उनका एक माध्यम होता है जिससे उनका मनोरंजन हो सके। संगीत जीवन की सभी समस्याओं, मानसिक थकान से दूर करने में हमारी मदद करता है, यहाँ तक कि समाधान भी करता है। राग यमन।

आजकल बड़ी कंपनियों में ऑफिसों में कर्मचारियों के काम करने के समय पर उनके दिमाग को तरोताजा, शांतिपूर्ण, एकाग्र और सकारात्मक विचारों वाला बनाने के साथ ही कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए धीमी आवाज में गाने चलाने का दौर चलन में है। जितना हमने देखा है, सुना है कि खिलाड़ी भी अपने तनाव को दूर करने के लिए गाने सुनते हैं, गाने गुनगुनाते हैं ताकि तनाव से बचा जा सके। अनेक खिलाड़ियों ने अपने इंटरव्यूज में कहा है, जब भी हमारा ध्यान खेल से भटकता था, तनाव महसूस होता था, तो हम गाने गुनगुनाते थे, गाने सुनते थे। एक खिलाड़ी के जीवन में भी संगीत का कितना महत्व है। एक महिला के जीवन में संगीत बहुत ही शक्तिशाली है और सभी भावात्मक समस्याओं के लिए सकारात्मक संदेश पहुंचाता है। संगीत की प्रकृति प्रोत्साहन को बढ़ावा देने की है, जो सभी नकारात्मक विचारों को हटाकर महिलाओं की एकाग्रता को शक्ति प्रदान करता है। संगीत वो है जो हमारे सबसे प्रिय के साथ की सभी अच्छी यादों को पुनः याद करने में मदद करता है। इसकी कोई सीमा, वादा और नियम निर्देशिका नहीं है। इसे तो केवल लगन और श्रद्धा के साथ सुनने की आवश्यकता है। जब भी हम संगीत सुनते हैं, यह हृदय और दिमाग में बहुत अच्छी भावना का संचार करता है। इससे हमारी आत्मा से जोड़ता है। यही जुड़ाव ईश्वर की सर्वशक्ति में भी होता है। संगीत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। संगीत के बारे में यह भी कहा जाता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, यह तो सभी सीमाओं से परे है। इसी से प्रभावित होकर मेरा भी संगीत से जुड़ाव हुआ और संगीत में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। एक महिला होने के नाते आज मैं आपके सामने अपने जो ये विचार प्रस्तुत कर रही हूँ, यह संगीत के ही कारण है, जिसके लिए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझ महिला को सुनने वाली हर महिला यह समझ रही होगी कि संगीत का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम जानते हैं कि आज की हर बीमारी, जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, हृदय संबंधी बीमारियों का मुख्य कारण तनाव और तनावपूर्ण बने रहना है। संगीत है तो तनाव मुक्त जीवन जीने में हमें सहायता मिलती है। संगीत के बिना हम महिलाओं का जीवन तनावपूर्ण हो जाएगा। संगीत में काफी शक्ति होती है। यह लोगों के मन में कई तरीके से जगह बनाता है। जहां ये काम को बनाता है और वहां ये काम को बिगाड़ भी सकता है। संगीत से सभी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि भी इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि संगीत के जरिए रोगों का उपचार भलीभांति किया जा सकता है। नेत्र रोग और हृदय रोग के उपचारों में इसका प्रयोग बहुत ही सफल रहा है। संगीत के स्वरों से पाचन संबंधी बीमारियों का उपचार भी किया जाता है। जैसे जैसे मनुष्य संगीत की स्वर लहरों में खोया चला जाता है, उसका ध्यान सब बातों से हट जाता है और वह सुकून महसूस

राग शिवरंजनी सुनने से वायरस जनित रोगों से बचा जा सकता है। जैसे संगीत योग की तरह है, ये खुश

राग शिवरंजनी सुनने से वायरस जनित रोगों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही यह शरीर व मस्तिष्क को राहत देने का भी कार्य करता है। हमारे शरीर के हार्मोन्स को संतुलित बनाए रखता है। मैं संगीत सुनना बहुत पसंद करती हूँ। सुबह संगीत सुनना मुझे बहुत पसंद है। संगीत हमारे हृदय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संगीत हमें अच्छी नींद प्राप्त करने में भी हमारी सहायता करता है। चूंकि शिक्षण काल में मैंने मेरा विषय संगीत गायन रखा था, अतः जब भी मैं थकान महसूस करती हूँ, कभी तनाव महसूस करती हूँ, तो अपनी पसंद का गाना गुनगुना लेती हूँ, सुनती भी हूँ। चूंकि शिक्षण काल में मेरा विषय संगीत गायन था, अतः जब भी मैं थकान महसूस करती थी, तनाव महसूस करती थी, तो अपनी पसंद के गाने गुनगुना लेती थी और उन्हें सुनती भी थी। हॉस्टल लाइफ में संगीत का सबसे अधिक फायदा मुझे इसलिए भी मिला था कि जब हम ग्रुप में बैठा करते थे, क्योंकि मैं संगीत गायन से थी और मेरा उस ग्रुप में एक विशेष आदर सम्मान किया जाता था। मेरी जूनियर्स भी मेरे से फरमाइश रखती थी कि दीदी मुझे यह वाला गाना सुनना है, मुझे वह वाला गाना सुनना है। उनका मेरे प्रति जो नज़रिया था वो केवल संगीत के कारण ही था। मुझे अभी तक की जीवन यात्रा में जो संगीत से मिला वह बहुत ही अविस्मरणीय है। संगीत क्या है? मधुर ध्वनियों तथा स्वरों का विशिष्ट नियमों के अनुसार लय में होने वाला प्रस्फुटन। संगीत मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। संगीत का नाम लेते ही सर्वप्रथम शास्त्रीय संगीत ध्यान में आता है। शास्त्रीय संगीत को भारतीय संगीत भी कहा जाता है। यह भारतीयता का प्रतीक है। शास्त्रीय संगीत में स्वर समृद्ध है। इसमें इतना भंडार है, इतनी निधि है कि वह सागर के समान है। संगीत को और अन्य भागों में बांटा जाए तो लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत इसके पर्याय कहे जाएंगे। संगीत का उपयोग बतौर थेरेपी भी किया जाता है। रोगों के आधार पर तैयार संगीत अनेक रोगों के लिए लाभकारी साबित हो जाते हैं। एक डॉक्टर ने अपने शोध में कहा है कि भारतीय शास्त्रीय एक अपरंपरागत चिकित्सा पद्धति है। इसके द्वारा समस्त आयु वर्ग एवं व्याधियों से ग्रसित व्यक्तियों का लाक्षणिक उपचार किया जाता है। यह भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं संवेदना के स्तर पर शरीर को प्रभावित करता है एवं मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। राग और उनके उपचार से अगर बीपी है तो धीमी पिच वाले तथा निम्न बीपी है तो तेज ध्वनि वाले संगीत का सुनना अत्यधिक लाभकारी होता है। दरबारी व सारंग राग हृदय रोगों से संबंधित हैं। शिवरंजनी स्मृति विलोप से राग और उनसे उपचार में अगर बीपी है तो धीमी पिच वाला

एवं निम्न बीपी हो तो तेज ध्वनि का संगीत सुनाया जाए तो वह रोगी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। दरबारी व सारंग राग हृदय रोगों के लिए लाभदायक है तथा शिवरंजनी स्मृति विलोप से संबंधित भी है। इसी प्रकार मालकोंस

जात श्वसन संबंधी रोगों से निवारण करने में हमारी सहायता करता है। वर्तमान की तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण कई व्यक्ति अनिद्रा से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में राग भैरवी और राग सोहनी को सुनना इस समस्या के निवारण के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राग भैरवी व राग देश सिरदर्द संबंधित तकलीफों में अत्यंत उपयोगी हैं।

हरी। राग पीलू रक्तहीनता के उपचार में काम आता है, तो राग जजवंती सामान्य शारीरिक कमजोरी में लाभ देता है। अतः मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी मेरी बहनें उदास हों, तनाव में हों, काम का बोझ ज़्यादा हो, तो संगीत से जुड़ें, संगीत को सुने। किसी भी बहन को ऐसी कोई तकलीफ हो तो वह उस तकलीफ में वह वही उसी प्रकार का राग सुने। मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न रहिए।

0: धन्यवाद।
1: तो सखियों, ये थी सोनिया करोला की विचारपूर्ण वार्ता, महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व। संगीत सच में जीवन की वो मधुर धुन है जो हर स्त्री के मन को शक्ति, सुकून और नई उम्मीद से भर देती हैं। इन्हीं सुरों की मिठास के साथ अब चलिए गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सखियों, आज हम बात करेंगे उन वीर शांति सैनिकों की जो दुनिया में अमन और इंसानियत की लौ जलाए रखने में के लिए अपने घर परिवार से दूर रहकर सेवा करते रह रहे हैं।
3: जी हाँ, बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें याद दिलाता है कि सच्ची बहादुरी सखियों सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं बल्कि शांति बनाए रखने में होती है। उन सभी वीरों का हमें हमारी सभी की तरफ से नमन जिन्होंने मानवता के लिए अपने साहस और समर्पण की मिसाल पेश की है।
2: आइए हम सब मिलकर

0: प्रेम, भाईचारा और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि शांति ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां से संगीत दिलों से बात करना शुरू कर देता है।
1: अब हम आपको ले चलते हैं गीत संगीत की प्यारी सी दुनिया में, जहां हर सुर दिल को सुकून देता है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सखियों, आज का समय बदल रहा है और इस बदलते समय में महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हैं, निभा रही हैं अपने हुनर और आत्मविश्वास से नए नए मुकाम हासिल भी कर रही हैं। पहले जहां रोजगार के लिए बाहर जाना ही एकमात्र साधन था, वहां अब स्वरोजगार यानी खुद का काम शुरू करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अवसर खुद ब खुद घर में होते हैं। चाहे वो सिलाई कह दो, चाहे ब्यूटी पार्लर का काम कह दो, और साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस का भी कह दो।
1: बिल्कुल, लेकिन माधवी जी, आजकल डिजिटल बैंकिंग की वजह से ना पैसों का लेन देन भी थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन साथ में इन आसानी के साथ थोड़ी सी मुसीबतें भी आई हैं, यानी कि फ्रॉड।
0: वो कैसे, वो भी थोड़ी डिटेल में बताइए अपनी सखियों को।
1: जी बिल्कुल सखियों, आज हम किसी भी तरह का जो भुगतान है या ये कहें कि बैंक हमारे फोन में है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम कोई भी भुगतान तुरंत एक क्लिक पर आसानी से कर सकते हैं। आज हम ऑनलाइन बहुत से जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, बेचते हैं या हम खरीदते हैं, तो जो पैसों का लेन देन होता है वो पूर्णतया ऑनलाइन होता है ना माधवी। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी पर ही आप विश्वास करें।
0: बिल्कुल,
1: है ना, किसी भी ऐप से जिससे भी आप खरीद रहे हैं वो ऐप बिल्कुल विश्वसनीय होनी चाहिए। आप जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना माधवी, तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि बीच बीच में एड्स आते हैं और वो एड्स हमें बहुत पसंद आते हैं, चाहे साड़ी के हो, कपड़ों के हो, बच्चों के कपड़ों के हो, छोटे छोटे घरेलू चीजों के भी हमें वो चीजें पसंद आती हैं। तो इस तरह की चीजें पसंद कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन सखियों पहले रिव्यूज जरूर चेक कर ले, क्योंकि रिव्यूज में हमेशा आपको सच्चाई उस ऑनलाइन ऐप की दिखाई दी जाएगी। और साथ ही ना सखियों, फिशिंग से आपको बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ये जो फ्रॉड है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या होता है कि आपके पास फोन आता है और वो लोग फोन करके आपको ये कहते हैं कि भाई आपका जो पार्सल है ना वो अटक गया है, या ना ये भी होता है माधवी, वो लोग कहेंगे कि ना आपका पेमेंट फेल हो गया है, तो आप ना कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए आपसे कहेंगे। लेकिन सखियों सावधान हो जाएं, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे कॉमन तरीका है ठगी करने का।
0: बिल्कुल सही बात कहा है अभी संध्या ने, तो बस सखियों ध्यान रखिए, हर महिला में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, बस उस हुनर को पहचानने की और अवसर को उसमें बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अवसर बदलने का मतलब मेरा यह है, जैसे कि संध्या ने अभी बताया था कि जो ये डिजिटल फ्रॉडिंग जो होती है ना, उसमें सावधान जरूर रहे, आप अपना ओटीपी जो है हर किसी पर
1: शेयर नहीं करें,
0: तो बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें और सजग रहें और अपने हौसलों को और अपने काम को यूं ही आगे बढ़ाते रहें।
1: इन फ्रॉड से डरकर ऐसा नहीं है कि आप पीछे हट जाएं, अपने कदम पीछे मत बढ़ाइए, लेकिन सावधान होकर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं अगले गीत की तरफ।

0: तो सखियों, आज की इस प्यारी सी चर्चा में हमने जाना कि ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। अब हम बैठे बैठे कपड़े, किताबें, दवाई और रोजमर्रा की जरूरत का सामान कुछ मिनटों में ही हमारे दरवाजे पर तक पहुंचा जा सकता है।
1: बिल्कुल सही, ऑनलाइन खरीदारी करते समय हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट का ही यूज करें। अपना ओटीपी, जैसे कि हमने पहले बताया था, वो किसी को ना दे। बैंक संबंधी जानकारी किसी को भी नहीं दे।
0: याद रखिए, सुविधाएं तभी सुखद बनती हैं जब उनके साथ सावधानी भी जुड़ी होती है। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। मैं हूँ माधवी व्यास
1: और मैं हूँ संध्या ओझा।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।

आपने सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी संध्या शर्मा और माधवी व्यास। आकाशवाणी बीकानेर का ये डोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05।

0: रिक्टर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी में होंगे और उसके बाद हिंदी में।
1: Afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of

0: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson.in

rn.gov.in और हमारे न्यूज ऑन या आईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं

0: आवरण मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिन्हा ने। फिल्म का नाम है दोस्त।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म खामोशी का ये गीत। गीत को लिखा था हेमंत कुमार ने, संगीत सलील चौधरी का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए श्यामजी घनश्याम जी के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है साजन दहलवी ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और फिल्म है ठोकर।

दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। सर था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के एडवाणी मेरे चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर और बप्पी लहरी ने। फिल्म का नाम है आपकी खातिर।

मंगेशकर और मुन्ना डे के गाये फिल्म श्री 400 बस के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये भूमि मरुचल है। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 3 बजे हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी

0: 415.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। दूसरी सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।

श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता

0: पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा मित्रों के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम युवा।

0: रेडियो का वॉल्यूम एक पॉइंट बढ़ा लो और जो भी सोच रहे हो उस पर अगले आधे घंटे के लिए फुल स्टॉप लगा लो, क्योंकि दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सबसे चुलबुला, सबसे कड़क और बिल्कुल आपके नए दिखने वाला प्रोग्राम ये वाणी। मैं हूँ आपकी अपनी शारदा।
1: और मैं हूँ गीता। वैसे शारदा, आज तुमने शुरुआत में कोई फॉर्मल नमस्कार आदाब ये नहीं किया।
0: बिल्कुल भी नहीं, आज हम सीधा स्वागत नहीं करेंगे, आज हम उनको हकीकत की दस्तक ही देंगे। वैसे बाहर धूप देखी है तुमने? आज अभी नौ तपा चल रहा है, सूरज देवता पूरी फॉर्म में आग बरसा रहे हैं।
1: अरे हाँ, ये तो सच है। बाहर चाहे 40 डिग्री पार क्यों ना चला जाए, नौ तपा हड्डिया को पिघलाने पर क्यों तुलाना हो। लेकिन तुमने गौर किया है कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के बुजुर्ग का जो ये चाय प्रेम है वो कभी कम नहीं हो सकता। पसीना पहुंचते जाएगी पर कुल्लड़ की चाय की चुस्की कभी नहीं छोड़ेगी।
0: बिल्कुल, और आज का ये शो उन सभी चाय के शौकीनों के नाम है जो इस नौ तप्पा की तपेश

0: में भी हर शाम नुक्कड़ पर बैठ के दुनिया बदलने की बातें करते हैं। उन सभी बैक बेंचर्स के नाम हैं जो क्लास में खिड़की से बाहर देखते हुए सपने बुनते थे, और उन टॉपर्स के नाम हैं जो किताबों के बीच अपनी असली खुशी ढूंढते थे।
1: वाह क्या बात है। तो दोस्तों, चाय कॉफी को हाथ में थाम लीजिए। बस एक बात है, हम अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है उसकी स्टीयरिंग व्हील कहीं ना कहीं मानो दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। या यूं कहें दोस्तों कि समाज के बनाए हुए रास्तों पर आंख बंद करके दौड़ने लगते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, हमारा इशारा है उस बड़े से हाथी की तरफ जो हर युवा दोस्त के कमरे में बैठा है, लेकिन कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। मैं बात कर रही हूँ उस कैरियर या करियर की जिसे चुनते समय दोस्तों आप अक्सर अपनी रुचि यानी अपने पैशन का गला घोट देते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, करियर ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अच्छे भले मुस्कुराते हुए चेहरे पर बारह मिल जाता है। दसवीं पास करो तो करियर की चिंता, बारहवीं में जाओ तो करियर का प्रेशर, और कॉलेज में आ जाओ तो मानो जिंदगी करो या मोरो का मैच बन जाती है।
0: हाँ गीता, और सबसे मजेदार बात तो जानते हैं, पिछली बार जब हम करियर शब्द पर बात कर रहे थे तो हमने समझा था कि इसका मतलब होता है कि हमारी आजीविका, हमारा पैशन, लेकिन लोग इसे कैरियर समझ लेते हैं यानी सामान ढोने वाला। और सच कहूं तो दोस्तों, अगर आप अपनी रुचि के बिना कोई करियर चुनते हैं तो आप अपनी जिंदगी को में सिर्फ एक कैरियर बनकर रह जाते हैं जो दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है।
1: बिल्कुल, करियर को कैरियर मत बनाइए। लेकिन शारदा एक बात तो है, व्यवहारिक होकर अगर सोचे तो आज के दौर में जब इतना कंपटीशन है कि हर जगह कट ऑफ 99% जा रहा है, वहां सिर्फ रुचि या मर्जी से काम कैसे चलेगा? पेट भरने के लिए और समाज में इज्जत कमाने के लिए एक सुरक्षित नौकरी भी तो चाहिए। तुम सिर्फ अपनी हॉबी के भरोसे पूरी दुनिया में अपना पहचान नहीं बना सकते ना।
0: तुम्हारी बात में दम तो है, इसे मैं नकारूंगी नहीं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको एक ऐसी गाड़ी में बिठा दे जो बहुत ही आलीशान हो, महंगी हो, लेकिन उसकी दिशा उस तरफ है जहां आपको जाना ही नहीं है, तो क्या आप उस सफर का आनंद ले पाएंगे?
1: शायद शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद जरूर घबराहट और बोरियत होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि कहां फंस गई मैं।
0: बस यही तो है दोस्तों, जब आप बिना रुचि के सिर्फ स्कोप देखकर करियर चुनते हैं, लोग कहते हैं बेटा इंजीनियरिंग कर लो, इसमें बहुत ही स्कोप है, बेटा मेडिकल ले लो, लाइफ सेट है। अरे भाई, स्कोप फील्ड में नहीं होता, स्कोप उस इंसान के अंदर होता है जो उस काम को कर रहा है। दोस्तों, अगर आपकी रुचि पेंटिंग में है और आप कंप्यूटर कोडिंग कर रहे हैं तो आप कभी भी एक बेहतरीन कोडर नहीं बन पाएंगे, आप सिर्फ एक औसत दर्जे के कर्मचारी बनकर रह जाएंगे।
1: दोस्तों, शारदा की ये बात सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि एवरेज बने रहना तो सबका सबसे बड़ा डर होता है, लेकिन समाज और परिवार का जो दबाव होता है उसका क्या करे। जब माता पिता कहते हैं कि हमने दुनिया देखी है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, तो हमारे दोस्त अपनी रुचि की वकालत कैसे कर सकते हैं शारदा?
0: देखो गीता, माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, उनका डर गलत नहीं है, उनका डर जायज है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक तंगियां देखी है, संघर्ष देखा है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। तो गलती कहाँ होती है? गलती होती है कम्युनिकेशन में। दोस्तों, अब दोस्त जो होते हैं हमारे, वो अपने सपनों को उनके सामने साबित नहीं कर पाते, वो बस जिद करते हैं लेकिन कोई ठोस योजना नहीं दिखाते।
1: अच्छा, तो ये बताओ कि इसका उपाय क्या है। मान लो जैसे हमारा कोई दोस्त है, उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है और उसमें बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उसके घर वाले चाहते हैं कि वो बैंक की तैयारी करे, तो वो कैसे समझाए उन्हें कि बैंक की कुर्सी पर बैठकर वो सिर्फ खिड़की के बाहर उड़ती चिड़िया को ही देख पाएगा?
0: बहुत इजी है ये तो। सिर्फ यह मत कहिए कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, उन्हें एक रिसर्च दिखाइए, उन्हें बताइए कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में करियर के क्या विकल्प है, आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कौन सी मैगजीन या वेबसाइट इसके पैसे देती हैं, और इस फील्ड के टॉप लोग कितना कमा रहे हैं। जब आप अपनी रुचि के साथ एक पूरा बिजनेस प्लान या फिर करियर रोड मैप पेश करेंगे ना दोस्तों, तो माता पिता का जो डर है वो भरोसे में बदल जाएगा।
1: यानी सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन सपनों के पैर जमीन पर रखना जरूरी है, यानी कि उनकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, रुचि का मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर रील्स देख रहे हैं और कहें कि मेरी रुचि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में है, मैं इसी में करियर बनाऊंगी। रुचि का मतलब वो है जिसे करते समय आपको समय का पता ना चले, वो काम है

0: जिसे अगर आप बिना पैसों के भी करने को कहा जाए तो आप उसे पूरी शिद्दत से करें। वो काम जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे लेकिन आपको थकाए नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा दे।
1: बिल्कुल, आखिर जिंदगी एक बार ही तो मिलती है और इसमें डर डर कर दूसरों के बनाए रस्तों पर रेंगने से बेहतर है कि आप अपने पंख फैलाएं और एक बार उड़ने की कोशिश तो जरूर करें। गिरेंगे भी लेकिन अपने चुने हुए रस्तों पर गिरेंगे और उसका मलाल कभी नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेते हैं, अपनी रुचि को अपनी ताकत बना लेते हैं, तो फिर भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए।
1: क्योंकि जब दोस्तों आप अपनी मेहनत और अपने पैशन को 100% दे देते हैं तो फिर बाकी सब कुछ उस ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, उस कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। वह आपकी मेहनत को कभी जाया नहीं होने देगी।

0: दोस्तों अब समय हो चुका है हमारे एक खास सेगमेंट का यानी क्विज सेगमेंट का, जिसमें हम आपसे पूछेंगे दो रोचक सवाल और उनका उत्तर मिलेगा आपको प्रोग्राम के लास्ट में। तो बिना देर किए जानते हैं आज का पहला सवाल।
1: तो पहला सवाल है कि हाल ही में इसरो नासा की संयुक्त सैटेलाइट मिशन निसार NISAR को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है, और दूसरा सवाल है
0: PM विश्वकर्मा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
1: तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इनके जवाब आपको मिलेंगे कार्यक्रम के अंत में।
2: रुक जा, असली नोट से क्यों

0: ब्रो ये फटा है।
1: सुन, फटे फटे आप पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
0: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: शारदा, बाहर की तपिश देखकर तो अच्छे अच्छों का पीस यानी जो सुकून है वो खो गया है। लोग पानी की तलाश में ऐसे भाग रहे हैं जैसे रेगिस्तान में हिरण भागता है।
6: बिल्कुल सही कहा। लेकिन दोस्तों जानते हैं, आज 29 मई है। इस भयंकर गर्मी के बीच आज का दिन पूरी दुनिया में एक बहुत ही खास पीस यानी शांति को समर्पित है। आज हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
5: बिल्कुल, जब हम शांति सैनिक यानी कि पीस कीपर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बंदूक थामे नीली टोपी पहने सैनिक आ जाता है। लेकिन ये आम सेना से दोस्तों थोड़े अलग होते हैं।
6: बिल्कुल। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन सैनिकों को पूरी दुनिया में ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट्स कहा जाता है। जब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने अपनी पहली शांति सेना भेजी तो वो चाहते थे कि ये सैनिक युद्ध के मैदान में दूर से ही अलग दिखाई दे। उनका मकसद किसी पर हमला करना नहीं बल्कि युद्ध को रोकना था, इसलिए उन्हें नीले रंग के हेलमेट और नीले रंग की टोपियां दी गई जो शांति और सुरक्षा का प्रतीक है, ताकि दुश्मन भी इन्हें देख कर अपनी बंदूक के नीचे कर ले।
5: दोस्तों साल 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में आग सुलग रही थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मिडल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों के बीच चल रहे जो विवाद है उसमें युद्ध विराम की निगरानी के लिए अपना पहला सैन्य पर्यवेक्षक मिशन भेजा था। और पता है उस पहले मिशन की याद में ही साल 2003 से हर साल 29 मई को यह दिवस आधिकारिक तौर पर मनाना शुरू किया गया। इसका मकसद है कि उन सभी पुरुषों और महिलाओं को ट्रिब्यूट देना जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
6: लेकिन दोस्तों हर देश की अपनी सेना होती है, फिर इस यूएन शांति सेना की क्या जरूरत है? ये ऐसा क्या काम करती है जो स्थानीय पुलिस या सेना नहीं कर सकती?
5: दोस्तों आप इसे ऐसे समझिए कि जब दो पड़ोसियों के बीच भयानक झगड़ा हो जाए, लाठी डंडे चल जाए, तो क्या वो दोनों आपस में बैठकर समझौता कर सकते हैं? नहीं ना, वहाँ किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति की जरूरत होती ही है जो बीच में खड़ा होकर दोनों को शांत कराए। मान लो कि यूएन शांति सेना वही निष्पक्ष तीसरा व्यक्ति है।
6: बिल्कुल सही समझाया। ये युद्ध ग्रस्त देशों में चुनाव करवाते हैं ताकि लोकतंत्र आ सके, और सबसे बड़ी बात यह है ये वहाँ मानवीय सहायता जैसे खाना, दवाइयाँ और पानी पहुँचाने का सुरक्षित रास्ता तैयार करते हैं।
5: भारत का इसमें क्या रोल है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत यूएन शांति मिशन में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है। अब तक भारत के लगभग 2 लाख से ज्यादा जाबाज सैनिक 50 से ज्यादा मिशनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों भारतीय सेना को समर्पित कैलाश खेर का ये गाना।
7: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
8: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी।

0: दोस्तों आज का युवा अपने भविष्य को लेकर पहले से कई ज्यादा जागरूक हो गया है। हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा मौका मिले जहां वो कुछ नया सीखे, अपने सपनों को पूरा कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके।
1: और जब युवाओं को सही दिशा, सही गाइडेंस और खुद को साबित करने का अवसर मिलता है तो उनको उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सोच भी पॉजिटिव हो जाती है।
0: पहले कई युवा सेना में जाने का सपना देखते थे लेकिन उन्हें लगता था कि यह रास्ता बहुत ही कठिन है या शायद उनके लिए अवसर कम है।
1: और कई बार तो कई जानकारी की कमी भी होती थी और कॉन्फिडेंस की भी, जिससे युवा अपने सपनों से पीछे हट जाते थे।
0: लेकिन समय के साथ युवाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की गई ताकि उन्हें आगे बढ़ने और देश सेवा से जुड़ने का अवसर मिल सके। और ऐसी ही एक पहल है अग्निपथ योजना, जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जून 2022 में।
1: इस योजना के तहत युवाओं को सेना से जुड़ने, ट्रेनिंग लेने और अनुशासन भरा जीवन जीने का मौका मिलेगा।
0: सोचिए, एक सामान्य युवा जो अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज हो, अगर उसे सही ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और गाइडेंस मिले तो उसका जीवन कितने अच्छी दिशा में बदल सकता है। ये एक नई सैन्य भर्ती योजना है। इसके तहत भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में युवाओं को शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए भर्ती होने का मौका मिलता है
1: और उन्हें कहा जाता है अग्निवीर, जो देश की रक्षा के लिए अग्निपथ पर चलने का हौसला रखते हैं।
0: दोस्तों इसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा भाग ले सकते हैं। इसकी भर्ती कुल 4 साल के लिए होती है। इसमें 6 महीनों की कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और इसमें पद के हिसाब से 10वीं या 12वीं का पास होना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और 4 साल यानी 4 साल तक देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन शायद एक बात बताओ, तुमने बोला 4 साल के बाद 4 साल की ट्रेनिंग होगी, तो उसके बाद क्या वो वापस अपने घर चले जाएंगे?
0: यही इस योजना का सबसे दिलचस्प मोड़ है गीता। 4 साल पूरे होने के बाद उस बैच के 25% अग्निवीरों को अपनी उनकी परमानेंट पोजीशन दी जाएगी, यानी वो आगे 15-20 साल तक सेना में रहेंगे। बाकी बचे 75% अग्निवीरों को एक शानदार विदाई दी जाएगी।
1: 4 साल की सेवा के बाद जब अग्निवीर बाहर आएंगे तो उन्हें टैक्स फ्री लगभग 11 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे, जिससे वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं।
0: दोस्तों सभी अग्निवीरों को सेवा के दौरान हर महीने अच्छी सैलरी मिलती है जो हर साल बढ़ती है। साथ ही 47 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है।
1: 4 साल बाद मिलने वाला अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आगे की नौकरी में बहुत काम आता है। इसका मतलब है कि सिर्फ 21 और 22 साल की उम्र में एक युवा अनुशासित, फिजिकली फिट और बैंक बैलेंस से मजबूत और देश की सेवा का टैग लेकर बाहर आएगा। और ये सच में दोस्तों पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल देने वाली योजना है।
0: बिल्कुल गीता, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, करियर वही चुनना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आपकी रुचि देश सेवा और एडवेंचर में है तो अग्निपथ योजना आपके सपनों को पंख देने के लिए एक बेहतरीन जरिया है।
1: बिल्कुल, देश सेवा से बढ़कर कोई करियर हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

90 साल और एक फानी सफर। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जा

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: रेडियो महसूस कीजिए रेडियो
1: रेडियो
0: रेडियो
1: रेडियो
0: क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों, इस समय बीकानेर में गर्मी अपने पूरे असर में है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने लगती हैं।
1: बिल्कुल शायदा, बीकानेर की गर्मी वैसे भी पूरे राजस्थान में काफी मशहूर मानी जाती है। ऐसे मौसम में अगर हम अपने खान पान और स्वास्थ्य का सही ध्यान न रखें तो शरीर जल्दी थकने लगता है।
0: बिल्कुल, गर्मी में लोग अक्सर कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं महसूस करते हैं और इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि स्किन पर भी दिखाई देने लगता है।
1: इसीलिए इस मौसम में हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो शरीर को अंदर से स्ट्रांग और फ्रेश बनाए रखे।
0: और इन्हीं में से एक बहुत जरूरी विटामिन है विटामिन सी।
1: हाँ दोस्तों, विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कई तरह के फायदेमंद साबित हो सकता है। ये इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद करता है और शरीर को कई सीजनल इन्फेक्शन से बचाने में भी सहायक होता है।
0: गर्मी में तेज धूप और लगातार पसीना निकलने की वजह से शरीर जल्दी टायर्ड फील करने लगता है। ऐसे में विटामिन सी शरीर को एनर्जेटिक और एक्टिव बनाए रखने में मदद कर सकता है।
1: और अगर स्किन केयर की बात करें तो विटामिन सी को स्किन हेल्थ के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है।
0: बिल्कुल, तेज धूप, पोल्यूशन और गर्म हवाएं का असर सबसे ज्यादा हमारी स्किन पर दिखाई देता है। कई बार स्किन डल और ड्राई लगने लगती है।
1: ऐसे में शायदा विटामिन सी स्किन को हेल्दी रखने, नेचुरल ग्लो बनाए रखने और स्किन को फ्रेश फील करवाने में भी मदद करता है।
0: इसीलिए गर्मियों में विटामिन सी से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही जरूरी माना जाता है।
1: नींबू पानी, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर और हरी सब्जियाँ, ये चीजें शरीर को फ्रेशनेस देती है और साथ ही साथ गर्मी से राहत महसूस करवाने में भी मदद करती है।
0: बिल्कुल, और खासकर बीकानेर जैसे गर्म इलाकों में लोग अक्सर नींबू पानी और फ्रेश फ्रूट्स लेना पसंद करते हैं क्योंकि ये शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों बढ़ते हैं इस जानकारी के साथ कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

0: दोस्तों, हमारे देश का संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का भी आधार है।
1: बिल्कुल, संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद है जो देश की व्यवस्था और हमारी जिम्मेदारियों को समझाने का काम करती है, और आज हम उसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 49 की।
0: दोस्तों, अनुच्छेद 49 यानी कि आर्टिकल 49 का संबंध देश की ऐतिहासिक स्मारकों और महत्वपूर्ण धरोहरों की सुरक्षा से है।
1: इसका मतलब ये है कि जिन इमारतों, स्मारकों या फिर स्थानों को राष्ट्र महत्व का माना गया है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की ही होती है।
0: बिल्कुल। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो हमारी सांस्कृतिक, इतिहास और पहचान को दर्शाते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि हमारे अतीत की अमूल्य धरोहर है,
1: और इन्हीं धरोहरों की सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संविधान में अनुच्छेद 49 को शामिल किया गया।
0: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐतिहासिक महत्व की जगहों को नुकसान न पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में जान सके।
1: सच में, क्योंकि जब हम किसी पुराने किले, मंदिर या फिर ऐतिहासिक स्मारक को देखते हैं, तो हमें अपने इतिहास और संस्कृति और विरासत से जुड़ाव महसूस होता है,
0: और इसीलिए इन धरोहरों की देखभाल करना सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सभी की भी जिम्मेदारी है।
1: कई बार लोग ऐतिहासिक स्थलों पर गंदगी फैलाते हैं या फिर दीवारों पर कुछ लिख देते हैं, जिससे उनकी सुंदरता और महत्वता को प्रभावित होती है।
0: दोस्तों, अगर हम अपनी विरासत का सम्मान करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां भी उसे समझ और महसूस कर पाएंगे।
1: अनुच्छेद 49 हमें यही संदेश देता है कि देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और अब हमारी संस्कृति और विरासत की इसी खूबसूरत भावना के साथ इस सफर को

0: दोस्तों आज 29 मई को सिर्फ विश्व शांति का दिन ही नहीं है बल्कि आज भारत के एक ऐसे महान नायक की पुण्यतिथि भी है जिसने भारत के खेतों में खुशहाली और शांति की फसल उगाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
1: अरे वाह, सच में दोस्तों, जहां जीवन के शांति सैनिक बंदूकों के बीच अमल लाते हैं, वहीं हमारे देश के इस मसीहा ने लाठी और हल के दम पर देश के करोड़ों किसानों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हम बात कर रहे हैं भारत के पांचवें प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की।
0: बिल्कुल, आज 29 मई को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि, लेकिन आज की पीढ़ी, हमारे युवा दोस्त उन्हें सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में ही जानते हैं। तो आज आपको

0: कि वो इतनी क्यों प्रसिद्ध थी और उन्हें किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता था।
1: और शारदा ये जानना जरूरी भी है। देखो दोस्तों, बात यह है कि चौधरी चरण सिंह जी कोई महलों में जन्म नेता नहीं थे। उनका जन्म यूपी के हापुड़ जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने किसानों का दर्द बहुत करीब से देखा था और वो कहते थे कि भारत का रास्ता गांव के खेतों से होकर गुजरता है। अगर देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को अबॉलिश करना। आजादी से पहले और उसके ठीक बाद गरीब किसानों की जमीन पर बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा होता था। किसान सिर्फ मजदूर बनकर रह जाता था। चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री रहते हुए इस कानून को लागू करवाया और रातों रात लाखों गरीबों किसान को उनकी खुद की जमीन का असली मालिक बना दिया।
1: वैसे दोस्तों, बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री और फिर प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया और वो बहुत सादगी पसंद इंसान थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उनके दरवाजे पर कोई भी गरीब किसान सीधे जाकर अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को खुले कह सकता था। वैसे शारदा, बातें तो चलती रहेगी लेकिन तुम एक चीज है जो भूल रही हो।
0: क्या?
1: वो ये कि हमने हमारे दोस्तों से दो सवाल पूछे थे क्विज के। हाँ। तो क्यों ना अब हम हमारे दोस्तों को उनके जवाब दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल था, हाल ही में इसरो नासा के संयुक्त सैटेलाइट मिशन निसार को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसका उत्तर है अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग।
1: और दूसरा सवाल है कि पीएम विश्वकर्मा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जवाब है कारीगरों और पारंपरिक आर्टिसंस को स्किल ट्रेनिंग और फाइनेंस सपोर्ट देना। दोस्तों, समय हो चला है आज के रोजगार समाचार का।
0: तो दोस्तों, संघ लोक सेना आयोग ने सीडीएस के 451 और एनडीए के लिए 394 पदों के लिए आवेदन चालू है, जिसकी अंतिम तिथि 9 जून 2026 है और इसकी आयु सीमा 20 वर्ष से 24 वर्ष रखी गई है।
1: और दोस्तों, अन्य जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाके चेक कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए दोस्तों, सही वेबसाइट पर जाकर आज ही अपनी योग्यता के अनुसार इसमें अप्लाई कीजिए और अपने करियर को रुचि के अनुसार उड़ान लीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे फिर। तब तक के लिए नमस्कार।

सुप्रसिद्ध युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आज युवाओं के साथ थी गीता सोनी और शारदा नैन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मिनिमम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का

आज रात 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज सुनिएगा उस्ताद अमजद अली खान का संतूर पर बजाया

10 बजे सुनिएगा उर्दू प्रोग्राम गुलिस्तां, इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आरडी बर्मन के संगीतबद्ध गीत, कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम एक ही संगीतकार के अंग।

बजकर 15 मिनट पर सुनिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का आनंद लीजिए रात 8:30 पर और रात 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं संध्या 7:45 पर।

0: सात बजे। आज की चर्चा का विषय है देश सेवा संकल्प बीजों में अंतर, नशा मुक्त गांव आदर्श गांव। ये तो थी हमारे इस सभी प्रसार
1: संवाद कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।
0: अब आप सुनेंगे समाचार।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में

चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD News को दिए

0: स्थिरता दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे एक ही फिल्म से कुछ फिल्मी गीत, और आज की फिल्म है मुगल आजम। मैं हूं आपका अपना साथी डॉक्टर अशोक प्रेम। श्रोता, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहती बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बन जाती है। ऐसी ही एक कालजयी फिल्म है मुगल आजम। आज के इस कार्यक्रम में हम इस महान फिल्म की कहानी, इसके कलाकारों, इसके संगीत और इसके अमर गीतों के माध्यम से उस युग में चलेंगे जिसने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर नई पहचान दी। मुगल आजम का निर्देशन किया था महान फिल्मकार के आसिफ ने। इस फिल्म को पूरा करने में लगभग 15 वर्ष लगे। 1940 के दशक में इसकी कल्पना की गई और 1960 में यह दर्शकों के सामने आई। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की उस समय की सबसे महंगी फिल्म मानी जाती थी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे, अजीत, निगाह सुल्ताना और मुराद। पृथ्वीराज कपूर ने सम्राट अकबर की भूमिका निभाई। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका अभिनय आज भी भारतीय सिनेमा में शाही अभिनय का मानक माना जाता है। दूसरी ओर थे दिलीप कुमार, भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग। उन्होंने शहजादा सलीम के रूप में प्रेम, विद्रोह और संवेदनशीलता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। और फिर थी मधुबाला। अनारकली के रूप में उनकी सुंदरता, उनकी मुस्कान और उनकी अभिनय क्षमता ने उन्हें अमर बना दिया। मित्रों, कहानी आरंभ होती है मुगल सम्राट अकबर से। वर्षों तक संतान न होने के कारण वे अजमेर जाकर मन्नत मांगते हैं। उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है और शहजादा सलीम का जन्म होता है। अकबर अपने पुत्र को एक योग्य योद्धा बनाने के लिए कठोर अनुशासन में रखते हैं। समय बीतता है, सलीम युवा होता है, युद्ध

विजय प्राप्त कर वापस लौटता है। यहीं से शुरू होती है वो प्रेम कहानी जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं फिल्म का पहला मधुर गीत।

अंधेरे में छेड़ गयो रे। लता मंगेशकर के स्वर में गीत था, गीत लिखा था शकील बदायूं ने, संगीत था नौशाद का। श्रोताओं, ये गीत फिल्म में जन्माष्टमी के उत्सव के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। नौशाद साहब भारतीय शास्त्रीय संगीत के अद्वितीय ज्ञाता थे। उन्होंने इस गीत में ब्रज की लोक परंपरा और शास्त्रीयता का अद्भुत समन्वय किया है। मित्रों, अब कहानी में प्रवेश करती है दरबार की एक सुंदर नर्तकी अनारकली। केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत संवेदनशील और स्वाभिमानी युवती है। पहली मुलाकात में ही सलीम उसके सौंदर्य और सरलता से प्रभावित हो जाता है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपने लगता है, लेकिन यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। एक और था हिंदुस्तान का भावी बादशाह और दूसरी ओर एक दरबारी नर्तकी। यह प्रेम मुगल साम्राज्य की परंपराओं को चुनौती देने वाला था। अब सुनिए वो गीत जिसने प्रेम को विद्रोह की आवाज दी।

प्यार किया तो डरना क्या। जी हां श्रोताओं, लता मंगेशकर के स्वर में गीत लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत था नौशाद का। वाह, भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद ही कोई गीत इतना साहसिक और प्रभावशाली रहा हो। इस गीत में अनारकली पूरे राज दरबार के सामने अपने प्रेम की घोषणा करती है, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। इन शब्दों में प्रेम का आत्मविश्वास और स्वाभिमान दोनों दिखाई देते हैं। मित्रों, इस गीत का फिल्मांकन प्रसिद्ध शीश महल में हुआ था। बताया जाता है कि इसके लिए बेल्जियम से विशेष शीशे मंगवाए गए थे। हजारों शीशों के बीच फिल्मांकन उस समय तकनीकी रूप से अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन परिणाम ऐसा निकला कि यह दृश्य भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। कहा जाता कि इस एक गीत पर उस समय लाखों रुपए खर्च हुए थे। प्रिय श्रोताओं, अकबर को सलीम और अनारकली के प्रेम का पता चलता है तो वे इसे साम्राज्य की प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानते हैं। अब संघर्ष आरंभ होता है, एक ओर पिता और बादशाह अकबर, दूसरी ओर पुत्र और प्रेमी सलीम। यही संघर्ष फिल्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और आइए अब सुनते हैं फिल्म का एक अत्यंत मार्मिक गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शकील बदायूनी के शब्दों को सुरों से सजाया था लता मंगेशकर ने और संगीत दिया था नौशाद ने। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। मित्रों, अनारकली अब कैद में है, उसका प्रेम अपराध बन चुका है, वो असहाय है, लेकिन उसका आत्मसम्मान जीवित है। यहीं पर प्रार्थना गीत सुनाई देता है जो अभी आपने सुना। मधुबाला ने इस दृश्य में जो भावनात्मक अभिनय किया वो आज भी दर्शकों को भावुक कर देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थी, फिर भी उन्होंने इस फिल्म के लिए असाधारण समर्पण दिखाया। दूसरी ओर दिलीप कुमार और मधुबाला के वास्तविक जीवन के संबंध भी उस समय चर्चा में थे। कई समीक्षकों का मानना है कि दोनों कलाकारों की वास्तविक भावनाएं उनके अभिनय में दिखाई देती हैं। अब सुनते हैं विरह और पीड़ा का एक अमर गीत।

की झूठी कहानी पर रोए। श्रोताओं, मुगले आजम केवल प्रेम कहानी नहीं है, यह सत्ता और भावना के संघर्ष की कहानी है, ये त्याग की कहानी है, ये उस प्रेम की कहानी है जो परिस्थितियों से हार सकता है लेकिन सम्मान से नहीं। फिल्म का हर दृश्य, हर संवाद और हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म के संगीत की बात करें तो नौशाद ने इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी। महान शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से भी फिल्म के लिए गायन करवाया गया था। ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना थी। उनके द्वारा गाया गया प्रेम जोगन बनके आज भी संगीत प्रेमियों के लिए धरोहर माना जाता है। फिल्म को प्रदर्शित होने पर अभूतपूर्व सफलता मिली। देश भर के सिनेमाघरों में 1960 में लंबी कतारें लगती थी। 2004 में इसका रंगीन संस्करण भी प्रदर्शित किया, जिसे नई पीढ़ी ने अत्यंत पसंद किया। और अब कार्यक्रम में अंतिम गीत की तरफ से बढ़ते हैं। स्वर है लता मंगेशकर और शमशाद बेगम का, गीत शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का।

श्रोताओं, आज हमने भारतीय सिनेमा की एक महान कृति की संगीत यात्रा का आनंद लिया। मुगल आजम केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय कला, संगीत, अभिनय और फिल्म निर्माण की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक है। के आसिफ का दूरदर्शी निर्देशन, पृथ्वीराज कपूर का प्रभावशाली अभिनय, दिलीप कुमार की गंभीरता, मधुबाला की अनुपम सुंदरता और नौशाद का अमर संगीत, इन सभी ने मिलकर एक ऐसी कृति का निर्माण किया जो कालजयी है, जो समय से परे है, जो समयातीत है। आज भी जब प्यार किया तो डरना क्या सुनाई देता है, तो प्रेम का साहस याद आता है। जब मोहे पनघट पे सुनाई देता है तो भारतीय संस्कृति की मधुरता सामने आ जाती है, और जब तेरी महफिल में गूंजता है तो शास्त्रीय संगीत की गरिमा का अनुभव होता है। इसलिए मुगले आजम केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसी भावना के साथ आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से को यही विराम देते हैं। मैं डॉक्टर अशोक प्रेम आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या परिश्रम का

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल

0: कल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही रक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपने नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर व्यक्ति तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांव में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। NIA की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले के संबंध में

0: विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के नेंगर में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रेक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाना पंचायत समिति में पारंपरिक लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थिति होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। तो मेन समस्या पानी की बताई गई है। पानी लेकिन बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन विश्वास आने वाले समय में पानी समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान के तहत सिरोही में CSR कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहरों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी गति की जा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी घोड़ावन के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक की मदद से

0: गोडावण की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावण संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावण का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावण राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावण प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ चौकसी कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटी की सौगात दी गई है। इससे दूर दराज के गांव ढाणियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 ईवी स्कूटी का वितरण किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इन स्कूटियों का वितरण किया। ये पहल नीति आयोग के फंड से शुरू की गई है। इससे दुर्लभ भौगोलिक परिस्थितियों में ANM की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण रोगियों तक टीकों और दवाइयों की पहुंच सुगम हो सकेगी। इस मौके पर CMHO डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फील्ड विजिट में तेजी आएगी और इन सेवाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। जिले को 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र की सौगात मिली है। बीते दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जैसलमेर में ये घोषणा की। गोवट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई करते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये ऐलान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज गड़ीसर सरोवर से हुआ। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित समारोह के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत सहित कई काम किए जाएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव की स्थली रामदेवरा देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर और रामदेवरा रेलवे स्टेशनों का तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। यहां यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा स्थानीय संस्कृति विरासत का मिश्रण देखा जा रहा है। रामदेवरा स्टेशन पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। इसे देखते हुए स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विशाल पार्किंग, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 250 हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले दिनों वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इस दौरान जल स्रोतों पर चिंकारा, नीलगाय, जंगली मरुबिल्ली, लोमड़ी और मोर सहित विभिन्न जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट देश के सगळी हाई कोर्ट ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद में सुनावण रा हुकम दीना। PM सूर्य घर योजना रा तेज हाल ताई देश रा 40 लाख घरां री छत माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावण री मशीना लगाई छी। प्रदेश में सत्यापन नहीं करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन में सत्यापन करायो चावेला।

0: हलका में कुछ ठोड़ा छापा मरिया। एनआईए री नेरी नेरी टीम अजमेर शहर और नीमराना रा कुछ हलका में शंका वाली ठोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी ची। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला में पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर कने नींदड़ में पानी बचावन रा काम रा तहत श्रमदान कीनो। ई मौके वे वन विभाग री ओर इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन भी कीनो। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद था। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। जैसलमेर जिला री भुणियाणा पंचायत समिति में पीपल पूजन करी जियो और महिलावा मंगल गीतों सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलका रा बिलावड़ी जोड़ में श्रमदान कर और पानी बचावन रो संदेश दियो चियो। ई मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहो कि ई अभियान रो मकसद जनता में पानी और पर्यावरण ने बचावन सारू जाग जगावन सागे वारी भागीदारी बधावनो है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि एक बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थिति होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। तो मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान रा तहत सिरोही माए सीएसआर कार्यशाला रखी ची। इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावन जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रबारा माए विगतवार चर्चा करी ची। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावन ने शपथ दिरावन रा कार्यक्रम रखी चिया। अरब मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हलका माए आंधी बारिश रे कारण पारो थोड़ो उतरणो तपन कम भी है। दोपहर पाछे कई हलका माए तेज हवा चालन आंधी आवण और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। ये बीच जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माए आज ही तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी वेवन सागे। बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग में कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बा रा आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि काली राज्य रा घनखर हलका माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन तेज आंधी अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी गति की जा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया में से चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वह वीडियो ने गलत बतायो है जिनमें इटली री प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारे में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रे मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने एआई बनाई चियो है। पीआईबी री फैक्ट चेक इकाई रे मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर माए संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इस दौरान सांसदा विधायका और आला अहलकारा सागे सरकारी कामकाज माए हिंदी ने असरदार तरीका काम लेवन रहा।

0: કોણ સુંદરામાં જગત કાર્યક્રમની ઉડીકમાં બેઠા સગળા કિસાન ભાઈ બહેન અને આપણે ભાઈ તોળારામ આર
1: રામુકા ખરા
0: ઘણા ઘણા
1: રામ રામ રામ રામ देखो तोड़ो भाई बात है कि अब थे आज तो बड़ा ठावस आया हो क्योंकि बारह की लाए कम है बल्ती कम है अब क्यों न तो नौ तब पचाले पर तब फिर बाद जने तो चोको जमन हुई
0: बिल्कुल
1: रूडी रखे किसान थारे हिरकार मारे हिरका की हांत्रो में हुई जने अभी तो देखो काले उन्नाड़े में खेत जाए नापा करा हुड़ खेत में करा हेलियो कटी कणो बांधान कटी खाद छिड़का अपन जगह बुडेरा दौड़ तौड़ा तरीका है कि घर में जो घास फूस है घर में जो की गाय भैंस रे गोरी जो की गोबरी खाद है बिन बड़ी करोड़ी राखी खंडड़े में और पानी हागे की मिलार गाडेर पाख लिया गाडी में भरन खेत में बुरका रहा जमीन उड़े को नीर खेत हो उपजे बस कहना है कहीं
0: मतलब देखो थे पूरी तैयारी कर रखी हो
1: तो देसी आदमी हूँ हाँ। गणित बात जानू को नहीं पर बड़ेरा ने बतौड़ी बात आई है कि देसी रठाठ निराला ही या करे
0: देखो देसी रठाठ भी निराला है और बाकी भी कई तरह रठाठ है नहीं भी की या किया करे कि देसी बीज है नहीं ये रठाठ निराला पर संकर बीज भी आपरी जगह जी का है नहीं भी अच्छा होया
1: अच्छा होया करे देखो अबार जका कृषि रा जानकार लोग है बे दो बीजन मिलान देसी इन कोई आज जड़ा विदेशी इन मिलान संकर बना दे पण बे लारे कोनी पण आपन जकी देसी और संकर तुलना करानी

0: चलो बडेरा दौड़ी बात। अब देखो बे जमाना तो है कोनी के मोठ में गुण नहीं पड़ा इर खातर राख में राख ला का कोई कोठलियो बरडू जो दे राख ले कदी तो दे लाग जाऊं तेर कदी हुल जाऊं तार अलोचो करन खेत में बीज छिड़कन टाइम आऊं तो जन कहत हुल गया कण काकड़ गरजार लाऊं तो का तोड़ काको अंगूठ बता देना।
1: देखो भाई फूटरी बात बता रही हो कि देसी बीजा में आज तो संकट रही है पर आ बात है कि देसी बीज आपनी जगह बहुत अच्छा है सर्वी है टिकाऊ है और अपारे जी की जेनेटिक संरचना जी के ना आजकल बोलिया करे नहीं या अंग्रेजी आड़ा
0: मन तो इतना जानू की आमनी जगह जमीन है नहीं भी अनुसार
1: मेरे अनुसार है अपारे जीवन के अनुसार है अपारे मौसम के अनुसार अपारे वातावरण के अनुसार
0: मतलब ढलन वाला है अपन जो ढलना जाम गए ढलन वाला है
1: बस
0: भी अनुकूल में तैयार हुए हैं।
1: हाँ
0: भी जमीन
1: बस थोड़ा सा बीर मायने सावचेती आ रखनी पड़े कि जी की बीमारियां और हुए घनी लग गया करे तो थोड़ो सो भी आने आप सावचेती राख
0: ला पर संस्करण के वे
1: हाँ
0: करवा की
1: राख ला तो फिर भी

0: रोटरी वार्ड बता दिया हो कि देसी बीजा में आज तो संकट रही है, पर आ बात है कि देसी बीज आपकी जगह बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं सर भी है,
1: टिकाऊ
0: है और अपारे जी की जेनेटिक संरचना जी के ना आजकल बोलिया करे नहीं या अंग्रेजी आड़ा
1: मन तो इतना जानो कि आम जी की जमीन है नहीं भी अनुसार
0: हमें अनुसार है अपारे जीवन के अनुसार है अपारे मौसम के अनुसार अपारे वातावरण के अनुसार
1: मतलब ढलन वाला है अपन जो ढलना जाम गए ढलन वाला है
0: बस
1: भी अनुकूल में तैयार हुए हैं भी जमीन
0: बस थोड़ा सो बीर माइनस सावचेती आ रखनी पड़े कि जी की बीमारियां और हो है घनी लगिया करे तो थोड़ो सो भी आने आप सावचेती
1: राखे पर संस्करण के वे करवा की
0: राखला तो फिर भी देखो आप आपारी फसल भी बचोड़ी रहे और आप आपारी जी की अच्छी गुणवत्ता युक्त आपने खेती चाहिए आपने फसल चाहिए वह आपने मिल जाया करे।
1: चलो भाई एक बात मैं रोजी ना हूं कि बगत रे बावड़ा मोती नीप जा करे बीज कभी जमीन में अलियो खोजे नहीं और धरती माँ तो परोपकार रूप रखे कि बा कभी आप रो बीज रखेगा नहीं चाहे बे बुटरा बीज खिंडिया है चाहे सेवन रखिंडिया है चाहे दूजे मोट बाजरी रा तिल रा मूंग रा रह गया है क्यों न तो बे अगले साल होगी जन बड़े रखे है तो अड़क बीज है पर अड़क में भी फल ला गया करे है और स्वाद में थोड़ा कड़ा जरूर हुए पर रखे तो देखो फूटरी बात ही है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो बगत तो है कि आप खेत में जे चोखो हूड कर लियो है खेत हड़ो कर लियो है तो मैं नड्डी का अब काले तीन में तो हर चला को सका नहीं अब कन जाके किसान रोज के कद बो थारो के बोलो ना आई कौन मानसून
0: मानसून
1: अरे देखी क्या
0: बोलो मैं आ बात कहने लाग रही हो कि भी कोई मान लो कोई भाई री जमीन इसी है जठे अपर देसी बीज और काम नहीं आवे तो भी देखो जमीन में ये तो छोड़ कौन
1: सा तो नहीं रहा
0: बठे अपर है संकर
1: संकर बीज का है हाइब्रिड काम आ सके
0: और ए अपर वातावरण में भी जिया है नहीं देखो ईर मायने लड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाए करे बस छोड़ो सो यार मायने फर्क हो कि आपने जिसी फसल अपनी परंपरागत और देसी बीज की अपन मिल जाए करे अच्छी भीतर को पण अपनी अच्छी फसल मिल जावे अच्छी उपज मिल जावे और अच्छा दाम भी मिल जाया करे
1: तो भाई एक बात ही भी जमीन जोड़ी क्यों आपने अपना मगरे धरती रे लोग बीकानेर ओले दौड़े जेटा अपन पांचू नोखा कोलाई थी बात करें तो मगरे में ग्वार चोखो या करे पन पांचू नोखेर धरती माते बाजरो जो को आप देसी बाजरो है बीएम बोन में आदमी संकर बाजरो भी बोवे जो को गुजरात और राजस्थान दे बीज रो मिले जुलो संकर रूप है पन देसी बाजरे जी होड बा पीली पट नैनो दानो इतनी स्वाद में फूट रही जे हुकी थे चाबर कई देर गुजी करो तो मुंह न लागे कि किन जी में
0: सगड़ो मिठास हो
1: रोटी हुई पीली पट जो कि करनाली तो मत है करनाली हुए और आगे जे हुए मोट अब मोट ही बात करा तो मोट पहली बड़े हाठी बहुत तब है तो देसी अब माफ करे सब देसी जो का मोट है वे बडेरा बहुता रहा बार आ गया हाठी यानी हाट दिन में पकड़ना पर हाठी री ओड तो देसी री ओड हाठी किया करी वे तो हाठी दिन में पके रहा चार महीनों में पके और मुने हिंदी में कहावत है कि सहज पके सो मीठा हो ओड़े ओड़े पकी जो को मीठो हुई स्वाद भी आई
0: और
1: बात ने अपन घनी पकाए भी तो उन्हें देखो खदबद खदबद सिंजर टेम योजन पहली तो मोट बाजरी ने बिगोर कूटिया कहने अब चूल्हे माथे चढ़ गैस मत ना के हूं मैं चूल्हे माथे चढ़ उड़े यार खदबद खदबद खींचड़ो खींचे मतलब जीवन आला तैयार बैठा है मन देखो मन ने अभी अभी काले उन्नारा में खींचड़ो
0: खींचड़े की तैयारी कर
1: देखो काले उन्नारो तो अपने भी तपते तावड़े में कट है भी किसो त्योहार आवे बो अपनो आखा तीज माथे भी बनावा और गांव में खींचड़ो आज भी बने चाहे दिन में बे आप रे कलेव कर ले दही रह गए आथंगा आप रे जीम
0: ले रहे भी करे नहीं कि भाई मोटो खाएड़ो है नहीं वो पच्चे भी आच्छो
1: नहीं हो पेरो मोटो खाओ और बट अब मन बात तो गणी याद आ गई पन पहली धाने में बाजरियां तारो खींचड़ो
0: होगी तो लोसा
1: याद लोसा
0: बिल्कुल

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: बात है कि गित्रलार कैसे संदेश समाए, इतनी फूटी बातें कई बार अपन

0: में मिला। और फूड की बात तो है कि आपने गांव है, गली है, ग्वाड है, बिरमा ने बेड़प हुआ है, भाईचारा हुआ है, बतलावन हुआ है, और एक अनूठी पहचान हुआ है कि भाई कहीं क्यों नहीं ग्वाड रहो, कहीं क्यों नहीं गांव रहो।
1: भाई देखो गांव री बात करो नी सने तो भी रम काका बात आ है कि भाई अपारा यदि गांव में सगड़ो मोटी बात आ हो जावे नी कि कोई भी मिनक कोई भी अपारे टाबर नहीं करने वाला होवे
0: कितनी लंठी बात कही है।
1: तो देखो गांव री जी की शांति आप पर गांव री जी की एकता आप पर गांव री जी की उन्नति तरक्की जी के ने कहवानी वा आप ही बड़ी
0: बड़ी रहे।
1: और कोई इसी बात को नहीं कि भाई आप यहाँ सोचा कि यार लागू को नहीं हो सके यार संभव को नहीं हुए। तो कई गांव में इसी देखो अपने महिला है नी भाई बीड़ उठा लियो भाई नहीं चाहे कुछ भी हो जावे आप गांव में नशो को नहीं उड़ता।
0: एक तो बात बताऊं तो बात आ है कि मिनख रे लारे जो को हाथ हो कोई मिनख का हाथ रहे ऊंचो को है संस्कार है तो फिर लारे एक आदर्श महिला रे व्या करे
1: बिल्कुल
0: सिंजारो जो बरतार की लेर नाम तो कहीं लेना बिजनेस सर नाम ही नहीं लेना कि लेर आवे घुंटी लेर आवे चाहे कोई नशो कर आवे और बाजे गर्म नहीं बढ़ दे तो अगले दिन मेरी हिम्मत को पड़े नहीं भाई हूँ नशो कर ना हूँ चाहे बनो पढ़ने जुड़े हुए चाहे टाबर माइट हुए गरीब लोग अगर थोड़ी संस्कारित हुए लांटी हुए नहीं तो पक्का धर्म देने नशेड़ा में गाँव में गली में ग्वाड़ में।
1: तो देखो इस अपर एक उदाहरण भी है अपर राजस्थान रो है कि राजस्थान रो राजसमंद जिलो है बीर मायने एक गांव है गांव रो नाम है देखो भाई काछर गांव बता रिया है
0: फूटरी बात बताएंगे
1: काचबली वो काचबली गांव में एक ही काम करियो बटेगी महिलावां जीती नहीं बस सब आपस में मिल गई और एक ही बात करी कि गांव में नशो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और इन सरुदो रमुका का सगड़ो मोटी बात है कि गांव रा सगड़ा लोग मिलर वोटिंग कराई कभी नशो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए
0: सहमत
1: रहे मायने देखो 94% लोग आकियो कि गांव में नशो नहीं होना चाहिए। और बीरे बाद में सरकार जी का आजकल विदेशी ठेकेदार जी का बोलिया कर
0: दुकान है
1: सगली सरकार ने बंद करवानी पड़ी बठू क्योंकि गांव री लुगया और गांव रा मिनक सगला मिल रहा तय कर दियो कि भाई हमारे गांव में कोई भी नशेरी बिक्री नहीं हो सके।
0: अब कहीं हुआ कि कोई बोला टाबरिया है चाहे जवान है वह सहज कई चीज मिलती हुई जिन्हें बैल खरीदी
1: खरीदी
0: अब जरूरत है कि गांव का जवान भाई आप टीम बनाने से कोई अभियान चलावे जहाँ देखो अपनी लोक कल्याणकारी सरकार भारत सरकार एक परिकल्पना है कि नशा मुक्त गांव आदर्श गांव अब भारत सरकार लांठी योजना है जगह गांव इन सारू काम करे बने प्रोत्साहन मिले और उन सारू सहयोग भी सरकार भी देवे और सरकार नुमाइंदा भी इन चीज में बढ़ चढ़न भाग लेवे कि फलानो गांव है जो को नशा मुक्त है। जरूरत है कि अपने भी चेतो करने पड़ सी और राज्य के पश्चिम री लाए है नशो आदमी कंज्यूमर में अकाउंट में दाना नहीं है पर नशो करने बैठा पैसा कितना लावे हर दिन तो बैठा ताश कूटे रात नशो कर घर जावे जनवा टाबरा रोर भी लुगाई रो कहीं दोस्त है जो कि लारे आई है।
1: बिल्कुल देखो कितनी फूटरी बात बताई। तो बात आ है रामु काका कि जागरूकता जरूरी है और ई जागरूकता से आप नशे ने रोक सका भई नशो जी को है अपारी जड़ा ने खोखली कर रही है अपारे शरीर ने खोखलो कर रही है और अपारे जी को आर्थिक नुकसान है
0: नहीं
1: ज्यादा हो रही है
0: कमावे कोने बीतम ज्यादा तो नशे में लगा
1: दे
0: जिनको कहीं टाबरन पढ़ाई कहीं समाज का दूसरा दायित्व है
1: मैं आपका
0: पूरा कर सी
1: बिल्कुल
0: जरूरत है कि मत रोक लगे मैं कोई और को दे दियो तो आप बुरे नाम है
1: हाँ
0: क्योंकि जरूरत है काको मुझे भर्ज बना के
1: हावचेती राखनी पता नहीं बिल्कुल और तो सब हावचेती यार रखो कि भगत हो रही है भाई लोगों ने गिटर लो सुनो जरूरी है
0: तो सुना दो बस का
1: बिल्कुल तो सुनाओ देखो पनगट पानी क्या लाऊं।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
4: तो मुका देखो अपा संदेश सुन लिया। संदेशों पहली अपा स्वाति शर्मा गायड़ो गीत सुनियो पंगट पानी
5: जाऊं। अब देखो पानी ने समझो राखनो और पंगट पर तो जाने की जरूरत को नहीं क्योंकि अब जे जे एम जकी है जल जीवन मिशन है भी वहाँ पर घरे कनेक्शन हो गया। हेलो
6: हर जल हर घर जल।
5: हाँ और फूटी बात आ है कि अपना फर्ज बना कि पानी ने बचाया रखा सागे सागे अपने घर में जगह खेती बाड़ी सागे दूजा काम है जहाँ अपन जो किसान हाँ तो खेती बाड़ी रहा एक मोटो और लांठो काम करा कि पशु डांगरा रखा पशुधन रखा और डेयरी व्यवसाय ने मजबूती देने खातर घना ही जतन करा जिंदा मायने आप दुधारू गाय रखो अच्छी नस्ल री रखो और जकी बछड़िया है बाने फूटी नस्ल तैयार करो और चाटो बाटो भी और घास फूस भी तकड़ो खिलाया करो।
4: बिल्कुल देखो थे बात कही होनी जने एक और बात याद आएगी की अबार आली जी की राजस्थान की सरकार है नी पशु पालक भाई जी का है इया ने बढ़ावो देन सारू इयारी समस्या रे निवारण सारू एक योजना चालू करी है और बिने बोलिया कर है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जी की है बा है और ई सु योजना सु भाई देखो खाली अपन पशु ही नहीं पशुआर वास्ते मान लो टीन सेट बनाना है कोई चारो खरीदना है कोई दवाई और
5: लेनी है तो सब तरह
4: हर तरह की व्यवस्था है और सगम मोटी बात जी की है नहीं हमारा मुका का आ है कि भाई देखो 1,00,000 रुपया तक रो जी को
5: अनुदान
4: लोन है नी वो बिना ब्याज मिल सके जैसे भगत पर किस्त मतलब बीर पर ब्याज नहीं तो बने 10.25% ब्याज बने है तो ब्याज पूरो और पूरो जे आप 12 किस्त में जमा करा दा अपन पूरो और पूरो माफ है
5: फूटी बात बताई और इन फूटी बात फायदो अपन नहीं लेना है किसान तो गोपाल क्रेडिट कार्ड रो फायदो लो और जो का जरूरत रहा कागज है भाई आप ऑनलाइन आवेदन करो और ग्राम पंचायत है या ग्राम सेवक जी है या पशुपालन विभाग रहा जो का नुमाइंदा है वो आप संपर्क करो और फूटी बात है तो दूजा ने भी बताओ
4: अपार इर मायने एक दो चीजा ध्यान रखने वाली बात भी है कि आपने एक तो गांव रो निवासी होना जरूरी है और दूसरो आज की सहकारी जी की समितियां होनी जुड़ियोड़ो होना जरूरी है ठीक है नी और बाकी आपने कई दस्तावेज चाहिए दो तरह आप आवेदन कर सका ऑनलाइन भी कर सका आप जो खुद करना चाहवा और नहीं जन ऑफलाइन करना चाहवा तो भाई आप पर कोई ई मित्र है और आप पर कोई जानकार लोग है
5: कागज
4: या फिर एज का आप ग्रामीण बैंक रोया करे यार मायने भी आप जानकारी लिए आवेदन कर सका।
5: फूटी बात होता है तो भाई अब फूटी बात आ है कि एक राजस्थानी कोई फूट रो सो गीतड़ लो होना
4: बिल्कुल
5: सुना सुनो

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और शिक्षा। यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।
1: मैं आकाशवाणी हूं।

90 साल और एक फानी सफर आकाशवाणी जिसमें संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: बात है की पैरी तुखी लागे नहीं लागे बना लाए है नहीं नो तपो लोगन खारो कड़ो लागे
1: बिल्कुल और ई नो तपे में किया करे है भी आ भले ही तपो पण आ परे बिरखा सारू मानसून सारू किया करे बहुत अच्छो होया करे हां
0: और वे कहीं की हूं जो का अपनी माठी रमाई ने कीट है फफूंद है टीडी रा जगह अंडा है बेनस तुझे और बीमारियां खतरो कम हो जाए और मिट्टी जो की है बा उपचारित हो जाए और बिया भी एक प्राकृतिक चिकित्सा रो नियम है कि धूप मिट्टी पानी हवा हर सब रोगारी सही दवा फूटी धूप रही तो हाथरो जमानो हुई जितो नो तपतपी भी तो मानसून बेगो आई
1: अब
0: बेगो है कि एक थोड़ो
1: दुनियादारी की चीज है सुन लो

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनिए FC पंवार की गाई हुई ये गजल।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। प्रारंभ में सुनिए विनोद राठौर और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है जीत।

0: राइस को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सीमा मिश्रा का गाया हुआ ये।

के गाए हुए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का एक कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। रात के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे और उसके पश्चात रात 9 बजे अंग्रेजी में।

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील

0: हासिल की।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि

पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार

सोनू निगम और तुलसी कुमार को। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 MHz पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:30 बजे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं पंचमदा यानी आरडी बर्मन। आकाशवाणी बीकानेर के इस विशेष फिल्म संगीत कार्यक्रम एक ही संगीतकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी डॉक्टर अशोक प्रेम। संगीत केवल स्वरों का संयोजन नहीं होता, वो भावनाओं की भाषा भी होता है। कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जो अपने समय में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दिलों में भी अपनी धुनों की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही महान संगीतकार को याद करेंगे जिनकी रचनात्मकता, प्रयोगशीलता और संगीत दृष्टि ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई दिशा प्रदान की, और वे थे राहुल देव बर्मन, हम सबके प्रिय पंचमदा। 27 जून 1939 को कोलकाता में जन्मे राहुल देव बर्मन का संगीत से रिश्ता जन्मजात था। उनके पिता थे भारतीय फिल्म संगीत के महान स्तंभ सचिन देव बर्मन और माता थी मीरा देव बर्मन, जो स्वयं संगीत और साहित्य में गहरी रुचि रखती थी। कहा जाता है कि बचपन में जब राहुल रोते थे तो उनकी आवाज में बार बार पंचम स्वर सुनाई देता था। अभिनेता अशोक कुमार ने स्नेहवश उन्हें पंचम कहना शुरू किया और आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया। बचपन से ही उनमें संगीत के प्रति अद्भुत संवेदनशीलता थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में धुनें बनानी शुरू कर दी थी। प्रसिद्ध गीत सरजो तेरा चकराए कि मूल धुन उन्होंने बचपन में ही तैयार कर ली थी। आइए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं एक ऐसे गीत से जिसने प्रेम संगीत की दुनिया में अमर स्थान

0: कितनी मधुर धुन, कितना सुंदर संयोजन और कितनी सहज
1: और रोमांटिक अभिव्यक्ति। 1973 में आई फिल्म यादों की बारात का ये गीत आज भी प्रेम गीतों की सूची में शीर्ष स्थान रखता है। इस गीत में पंचम दानी गिटार, मैंडोलिन और विशेष ध्वनि प्रभावों का ऐसा प्रयोग किया था जो उस समय बिल्कुल नया था। मित्रों, 1966 में फिल्म तीसरी मंजिल में पंचम दा को फिल्म उद्योग में स्थापित कर दिया। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोना रे, जैसे गीतों ने घोषणा कर दी कि हिंदी फिल्म संगीत को एक नया सितारा मिल चुका है। 70 का दशक आते आते पंचम दा युवाओं की पहली पसंद बन गए। पश्चिमी संगीत, जैज, लेटिन बीट्स और भारतीय लोक धुनों का ऐसा अद्भुत

हम शोले की अनेक फिल्म में भारतीय सिनेमा का इतिहास है। इस फिल्म का संगीत तैयार करते समय पंचम दा ने प्रत्येक पात्र की मनोभूमि को ध्यान में रखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि पंचम दा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घंटों बैठकर ध्वनियों के साथ प्रयोग करते थे। कभी खाली बोतलों पर चोट करके ध्वनि निकालते, कभी कंघे और कागज से संगीत रचते और कभी केवल सांसों की आवाज को भी लय का हिस्सा बना देते हैं।

जिंदा की सबसे सफल साझेदारियों में एक थी किशोर कुमार के साथ। किशोर कुमार की आवाज और पंचमदा का संगीत मानो एक दूसरे के लिए ही बनी थी। चिंगारी को भड़के मेरे नैना सावन भादो, रिमझिम गिरे सावन और ओ मेरे दिल के चैन, और साथ ही पल पल दिल के पास जैसे अनगिनत गीत आज भी लोगों की स्मृतियों में बसे हुए हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा।

आशा भोसले से हुआ। यह केवल वैवाहिक संबंध नहीं था बल्कि भारतीय संगीत इतिहास की सबसे सफल रचनात्मक साझेदारियों में से एक था। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, मेरा कुछ सामान, जाने जहां ढूंढता फिर रहा, दिल भर दिल से प्यारे जैसे अनेक गीत इसी जोड़ी की देन है। आशा भोसले स्वयं कई अवसरों पर कह चुकी है कि पंचमदा केवल संगीत बनाते नहीं थे बल्कि हर गीत में एक नया संसार रच देते थे। 1970 और 80 के दशक में पंचमदा की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। उन्होंने लगभग 330 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत जो प्रेम की गहराई को बेहद खूबसूरती से व्यक्त कर

0: दशक के उत्तरार्ध में संगीत का परिदृश्य बदलने लगा, नए संगीतकार सामने आए, फिल्म निर्माताओं की पसंद बदलने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब पंचपदा को अपेक्षित काम मिलना बंद कम हो गया, लेकिन सच्चा कलाकार कभी हार नहीं मानता। इसी दौर में उन्होंने कुछ ऐसी धुनें रची जिन्हें आज संगीत के खजाने का हिस्सा माना जाता है। उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके संगीतबद्ध कई गीतों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। उनकी स्मृति में बाद में आरबी बर्मन अवार्ड की स्थापना की गई, जो नई संगीत प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक फिल्म के लिए संगीत तैयार किया, 1942 लव स्टोरी। 4 जनवरी 1994 को पंचमदा इस दुनिया से विदा हो गए और अपनी अंतिम महान कृति की सफलता स्वयं नहीं देख सके। लेकिन जब फिल्म प्रदर्शित हुई तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और कुछ न कहो, रिमझिम रिमझिम जैसे गीतों ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए पंचमदा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका संगीतबद्ध किया हुआ एक और गीत सुनते हैं।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूं,
2: ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
3: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
2: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
3: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शौक कहाँ?
2: भूल गई,
3: तुम नहीं बदलोगी।

श्रोता, आज हमने याद किया उस कलाकार को जिसने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे कल्पना, प्रयोग और संवेदना की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पंचमदा ने भारतीय फिल्म संगीत को आधुनिक स्वर दिया। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जो आज भी संगीतकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी धुनें आज भी नई लगती हैं, क्योंकि उनमें समय को पार कर जाने की शक्ति है। जब जब

0: हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास लिखा जाएगा। पंचमदा का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। सुरों के इस जादूगर को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं डॉक्टर अशोक प्रेम अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम गुलिस्ता। इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी न।

उलझन सी होने लगती है, एक उलझन सी होने लगती है बात जब देर तक नहीं होती। और आगाज मोहब्बत तो चलो कर भी ले, लेकिन आगाज मोहब्बत तो चलो कर भी ले, लेकिन इसमें बड़ा नुकसान उठाना भी पड़ेगा। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, मैं आपकी मेजबान डॉक्टर शाइस्ता मैटोपेन गुलिस्तां के स्टेडियम में। जी हाँ, गुलिस्तां के स्टेडियम में क्या क्या है खास आपको बता देते हैं। सामी आज हमारे साथ तकरीर गो जुड़ेंगी, जी हाँ, जो कि पेशे से टीचर है, बच्चों को ये सबक पढ़ाती है और आज उनकी और बेहतरीन तकरीर गो है। आज उनकी तकरीर का मौजू है जदीद दौर में उर्दू अदब की अहमियत। साथ ही साथ बहुत सी बातें होंगी और गजलों के नजराने के बगैर तो हमारी महफिल बिल्कुल अधूरी है। तो जी आगाज करिए हमारे प्रोग्राम का, और आज का जो टॉपिक हमारी गुफ्तगू का है वो ये है कि गुफ्तगू करने का तरीका और इसके असरात। तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि एक छोटी सी खूबसूरत सी गजल आपकी नजर कर देती हूँ।

हर जगह अल्फाज का चुनाव बहुत अहम हो गया है। हमें चाहिए कि हम बोलने से पहले सोचें कि हमारे अल्फाज सामने वाले के दिल पर क्या असर डालेंगे। याद रखिएगा, अच्छे अल्फाज सदका है और नर्म गुफ्तगु इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आइए आज हम सब ये अहद करें कि अपनी गुफ्तगु में शाइस्तगी, नरमी और एहतराम की जगह दें और एहतराम को जगह देंगे, क्योंकि महसूब गुफ्तगु ही एक महसूब माशरे की बुनियाद होती है। इसी पैगाम के साथ अगला प्रोग्राम, जी हाँ, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और वो है हमारी तकरीर। जी हाँ, हमारे साथ तकरीर गो है अलमास और उनका मौजू है जदीद दौर में उर्दू अदब की अहमियत। लीजिएगा, जदीद दौर में उर्दू अदब की अहमियत। आज का दौर तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी और लगातार बदलाव का दौर है। हर चीज डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। लोग अब किताबों से ज्यादा स्क्रीन पर वक्त बिताने लगे हैं, लेकिन इस तेज रफ्तार दुनिया में इंसान कहीं ना कहीं अपने जज्बात, अपनी तहजीब और अपने असल पहचान से दूर होता जा रहा है। ऐसे वक्त में उर्दू अदब की अहमियत और भी बढ़ जाती है। उर्दू अदब सिर्फ एक जबान नहीं, बल्कि एक ऐसी तहजीब और सोच और एक ऐसा एहसास का नाम है। इसमें मोहब्बत है, इंसानियत है, दर्द है, सच्चाई है और रिश्तों की करवाहट है। उर्दू शायरी और अफसाने इंसान के दिल की आवाज होते हैं, जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। उर्दू अदब की खूबसूरती ये है कि यह हर दौर में इंसान के जज्बात की तर्जुमानी करता है, चाहे मोहब्बत हो, जुदाई हो, समाज की परेशानियां हो या इंसान की तन्हाई। उर्दू अदब हर एहसास को बेहद खूबसूरती से बयान करता है। अगर हम पुराने शायरों अदीबों की बात करें तो मिर्जा गालिब का नाम सबसे पहले आता है। गालिब ने इंसानी फितरत, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफे को अपनी शायरी में उतारा है। उनका मशहूर शेर यह है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये सिर्फ शायरी नहीं बल्कि इंसानी ख्वाहिशें और अधूरी तमन्नाओं की सच्ची तस्वीर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इनकी शायरी आज भी नौजवानों को आगे बढ़ने और खुद पर भरोसा करने की प्रेरणा देती है। फैज हम फैज ने मोहब्बत के साथ साथ समाज इनकलाब की आवाज बुलंद की है। उन्होंने मजलूमों और गरीबों के दर्द को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। फैज की शायरी इंसानियत और समाजी बराबरी का पैगाम देती है। अगर जोन एरिया की बात करें तो उनकी शायरी में तन्हाई, उदासी, जिंदगी की हकीकत साफ नजर आती है। नई नस्ल आज भी जोन एरिया को बहुत पसंद करती है। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानियाँ लिखना, कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानियाँ लिखना, जैसे पानी से पानी पे हो पानी लिखना। फराज ने मोहब्बत और जुदाई को बेहद खूबसूरती से बयान किया है, आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। और शायरों की बात करें तो साहिर लुधियानवी ने समाज की सच्चाइयों को अपनी शायरी में पेश किया है। उन्होंने मोहब्बत के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी और इंसानी तकलीफों को भी बयान किया है। फिराह की शायरी में मोहब्बत और इंसानी एहसास की गहराई मिलती है, इंसानी एहसास की गहराई मिलती है। परवीन ने औरत के जज्बात को बेहद नर्म और खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूलों का है फूल किधर जाएगा। नीदा फाजली ने आम जिंदगी की छोटे छोटे एहसासों को अपनी शायरी में जगह दी है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद बहुत दूर क्यों, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये शेर सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इंसानियत का पैगाम है। अगर अफसाना निगारी की बात करें तो सआदत असन मंटो का नाम बहुत अहम है। उन्होंने समाज की कड़वी सच्चाई को बिना किसी डर के लिखा। उनके अफसाने आज भी समाज का आईना माने जाते हैं। इसमत चुगताई ने औरतों की जिंदगी, उनके जज्बात और समाज में उनकी परेशानियों को खुलकर पेश किया है। कृष्णचंद्र ने गरीबों और आम इंसानों की जिंदगी को अपने अफसानों में उतारा है। राजेंद्र सिंह बेदी ने रिश्तों और इंसानी भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। अगर प्रेमचंद की बात करें तो उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में अद्भुत साहित्य

मीडियम में 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:10:30 होने को है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज सुनिए उस्ताद अमजद अली खान का संतूर पर बजाया राग यमन। तबले पर इनके साथ है देवाशीष चक्रवर्ती और तंबूरे पर है राकेश प्रसन्ना।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग यमन सुना। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मेरे 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार पहले हिंदी में और उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहने की ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।